तंदे कहां ब्यापैता हूं, जो एक शाड़ियन कत न जाहू, जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान, मन अठ मिलो ना कोए, कहो नानक कृपा पही, भक्त ज्ञानी सोए। पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो, अनक जुगत शास्त्र कर पातो, ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो, कहत सुन तो का जोग ना हो। ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह, उसन सी तो समसर सब ता कह, ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा धारी। सलोक आवन आए सृष्ट में, बिन बूझे फस टोर, नानक गुरमुख सो बुझे, जा कै पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक कह आया, जन्मत मोयो मोनी माया, गर्भ कुंट में उर तब करते, सास सास स्मृत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवन हार मन बिसराना, तारो कृपा जसै गुसाई, एत्युत नानक तिस बिसरो नाही। सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म, आज्ञा पिन ना कोए, आमन जाना तेह मिटै, नानक जेह मन सोए। पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे, मोह मगन मीठ जोन फासे, इन माया त्रैगुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने, ए साजन कश कहो उपाया, जाते तरो बिखम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट ना माए। सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ, कीने तिन प्रभ आप, पासे अपन हाँ हाँ करे, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी एक आप करावन हारा, आपे पापुन बिस्थारा, या जुग जिजत आपे लायो, सो सो पायो जो आप देवायो, उवा का अंतना जाने को, जो जो करे सूफन हो, एक ते सगला बिस्थारा, नानके आप सवार नहारा। सलोक राज रहे बनता बिनोद, कुसम रंग बिख सोर, नानक तेह सरनी परो, बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जै रचा, तह तह बंधन पाए, जेह बिद कतू न छूटी है, सकते उकमाहे, हाँ हाँ करते कर मरत, ताको पारिया फार, प्रीत नहीं जो नाम से हो, तौ एउ कर्म बेकार। बादे जम की जेवरी, मीठी माया रंग, भ्रम के मोहे ने बुझै, सो प्रभ सधु संग, लेखै गणत ना छूटी है, काची पीत ना शुद्ध, जिसै बुझाए नानका, ते गुरमुख निर्मल बुद्ध। सलोक टूटे बंधन जा सके,

भुवन हार हो सदयाया, अकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, प्रगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफलो ताहू को गनिय, जास रसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कै ही अरे एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संग कर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी कक्का कारण करता सो, लिख्यो लेखना मेटत को। नहीं होत कही दो बारा, करने हारना पुल नहारा। काहू पंथ दिखा रहे आपै, काहू ध्यान परमत पैता पै। आपन खेले आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलशित रहे, टूटना जाहे भंडार। हर हर जपत अनेक जानो, नानक नाहे सुमार। पौड़ी खखा खूना कश नहीं, ते समर्थ कै पाहे। जो दे ना सो दे रहो, पावे तै तै जाहे। खर्च खजाना नाम तानो, या भगतन की रास। खिमा गरीबी अंध सहज, जपत रहे गुणतास। खेले बिकसै अंध स्यों, जा कहो होत कृपाल। सदीव गनीव सुहावने, आराम नाम गृह माल। खेद ना दुख ना डानते, जा कहो नदर करी। नानक जो प्रभ पाणिया, पूरी तिना परी। श्लोक गन मिन देखो मन माहे, सर पर चलनो लोग। आस अनित गुरमुख मिटै, नानक नाम आरोग। पौड़ी गगा गोबिंद गुण रवो, सा सा जप नीत। कहां बे सा सा देह का, बिलम ना करो मीत। नह बारक नह जोब नह, बिरधि कश बंद। ओ बेरा ने बुझिए, जो आए पर जम फंद। ज्ञानी त्यानी चतर पेख, रहन नहीं ए ठाए। छाड़ छाड़ सगली गई, मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह, जाहू मस्तक भाग। नानक आए सफलते, जा को प्रै सुहाग। सलोक
कोखे शास्त्र वेद सब वान कहतो कोए, आजुग आदि हुण होवत नानके कै सोए। पौड़ी कग्गा कालो मनै एह बिन हर दूसर नाहे, नै होवा नै होवना जत कत उही समाहे। कूलै तौ मन जवा वै सरना, नाम तत् कलमै पुनै चरना। काल काल अनक पछतावै, बिन हर भगत कहां थित पावै। कोल महारस अमृते पिया, नानक हर गुर जा कौ दिया। सलोक घन काले।

गंगा ग्रासै काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै। सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक। चित चितवो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिगसात प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दैदस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिनसो सबदुआ सा संगमन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक। छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए। ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए। पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दास दासन के पानी हारे। शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता। शार स्यान बौचितराई संतन की मन टेक टिकाई। शार की पुत्री परमगत पाई नानक जाको संत सहाई।

ठठा मनुआ ठा है नाही, जो सगल त्यागे कै लपटाही। ठहक ठहक माया संग मुवे, उवा कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संत संग बसया, अमृत नाम तहां जी रसिया। ठाकर अपने जो जन पाया, नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं, जय डेरा तै जान। ओवा डेरा का संजम, गुर कै शब्द पिछान। ओवा डेरा या डेरा को श्रम कर कालै, जाका तसु नहीं संचालै। ओवा डेरा की सोमत जान है, जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचर सच साध संग पाया, नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए, कने न काल्यो बंद। नानक उभरे जप हरी, साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ, टूंडन या मन माहे। संग तुहारे प्रभ बसै, बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग, अहंग बुद्ध बिकराल। सुख पावो सजे बसो, दर्शन देख निहाल। तेरी जामै जा मरै, गर्भ जोन दुख पाए। मोह मगन लपटत रहे, हाहो आवै जाए। टहत टहत अब टह परे, साजना सरनाए। दुखे फाहे काटिया, नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। अणा होना तूने छुटै, निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अणाणा रण तेसी जिया, आत्म जीतै कोए। होमे अनस्यो लर मरै, सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै, गुरपूरे उपदेश। मनुआ जीतै हर मिलै, तेसु रतन वेस। अणा को जानै अपनो, एकै टेक आधार। रहण दिन सो सिमरत रहै, सो प्रभु रखिया पार। रेण सगल या मन करै, एऊ कर्म कमाए। हुक्मै बूझै सदा सुख, नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै, प्रभु मिलावै मोहे। नानक परम पौ काटियै, चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर, गुणित गोविंद राय। फल पावै मन बांझते, तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की, जास बसै मन नाओ। गत पावै मत होए प्रगास, मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै, ग्रेजो बनै राज। संत संग सिमरत रहो, एह तुहारै काज। ताता कछु न होइऐ, जो ताप निवारै आप। प्रतपालै नानक हमै, आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते, तृप्त ना तृष्णा लाथ। संच संच सागत मुवे, नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं, काय पसारो पाव। अनक बंच बल छल करो, माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो, थाक परो गावार। मन कै कामना आवई, अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजो, संत की सिख ले हो। प्रीत करो सद एक स्यो, या साचा स्नेहो। कारण करन करावन, सब दे कै हाथ। जे जित लावो, तित लगै, नानक जंथया नाथ। श्लोक दस एक निहारिया, सबके देवन हार। सा सा सिमरत रह।

दें दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जा।

होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी अरारा रेन हो सब जा की ताजा मान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो सी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लेवलाई रहत रह जाए बेकारा गुरपुर के शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदा ते सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू दुख दर्द ते मिटै खनाहू नाम औखद जिरदै हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब कट है भाई गुरपुरे बिन बिदना बनाई गुरपुरै संयम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक वासदेव सर्वत्र मैं ऊनक तू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी ववा वैर न करिए काहू घटकटे अंतर ब्रह्म समाहू वासदेव जल थल मैं रविया गुरप्रसाद विरलै ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चेहन सगलै ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हां हां करत बिहानिया साकत मुकदया जान रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत नानक किरत कमान पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत नाम आराधु रूडो जे बस्यो रिद माही ओवा की राड़ मिटत बिन साही राड़ करत सगत गावारा जे ही है अंबुद बिकारा अड़ाड़ा गुरमुख राड़ मिटाई निमुख माहे नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट कहो उक्त सियान पत्याग गुर दीख्या जे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन परे अवहारे शास्त्र सिमरत बेद पुकारे सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सा सा संपूल नहारे तुम समराथ्या गंता पारे सरन परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला सलोक खुदी मिटी तब सुख पए मंतन पए अरोग नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होताहू जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू खरा निमाना होत परानी अंदर जापै प्रभ निर्बानी भावै खसम ता उवा सुख देता पार ब्रह्म ऐसोवा गणता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहस पात करै चतराई संग तुहारै एक न जाई सौ सौ जप दिन राती रे जी चलै तुहारै साथी साध सेवा लावै जे आपै नानक तां को दुख ना व्यापै सरो सलोक हर हर मुख ते बोलना मन उठै सुख होए नानक सब मैं रवरया थान थनंतर सोए पौड़ी हेरो कटकट सगल कै पुर रहे भगवान होवते आए सदसदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हाँ छुटकै होय आनंद तेह हाँ नाही तह आप हते दुख जन्म मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संत संग होत कृपाला ओरै कछु न किन्हू किया नानक सब किछ प्राप्त हुआ सलोक लेखै कतै न छूटिया खिन खिन पूलन हार बख्शन हार बख्शले नानक पार उतार पौड़ी लून हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण दे दे टुंडन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमखना मने बसाए लालच झूठ बेकार मोह या संपै मन माहे लंपड़ चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए
तुद भावै तां बख्श लै, खोटे संग खरे, नानक भावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे सलोक। खात पीत खेलत हस्त, भरमे जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु, नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलते आयो, अनक जौन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत, सतगुर बचन समाए, खिमा गही सत संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकर पई, अंत सुख विश्राम। खेब निबाही बहुत लाभ, घर आए पतवंत, खरा दिलासा गुरदिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करे आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है, जे कटकट रहा ब्याप। सलोक आए प्रभ शरणागति, कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं तेरे पवन प्रभ तारे, अखर कर कर बेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निरलेपा। सलोक हाथ कलम अगम, मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग, अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रत

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछु अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवे, महा उदास्त पितर थीवे। अग्न माहे होमत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तौपी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन से अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखिया उटर। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दर गै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरत

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लोभावे जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगह मान पावे नानक पासे ती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताक जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद या पूखन पहरी जै मन ते सिमरत क्यों वालस की जै जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी

रखै जेह प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जेह प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जेह प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जेह प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जेह प्रसाद बोले अमृत रसना, जेह प्रसाद सुख सहजे बसना। जेह प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजै सव्याप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनयाई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुरदेवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक प्रहरै।
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगहेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरसो सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत

प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै तां पाथर त्रावै, प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै तां हर गुण पाखै, प्रभ भावै तां पत तो धारै, आप करै आपन विचारै, दुहां सिरिया का आप स्वामी, खेलै भिक्षै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किश ले, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानते अपने आप बचै, परमे पूला दै दस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जाना मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल देह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा ना गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत या बनाई, नानक जीवै देख बड़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष पावै सोई फुंथियो, कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर खरख, कबहू सोग हर खरंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावन हार, कबहू निरत करै बहुपात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहो पिखारी नीच का साजा, कबहू अप कीरत मह आवै, कबहू पला पला कहावै, ज्यो प्रभ राखै तिवहि रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन तारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधु मो ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै, ज्यो प्रभ पावै तिवै निचावै, ज्योतिष पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग ते हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मानता नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले, अष्टपदी जिसके अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत सवान, जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस कौ करवंत कहावै, जन्म मरै बह जोन परमावै, तन भूम का जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानकी हां मुक्त आगे सुख पावै, धनवंता होए कर गरबावै, तृण समान का संग न जावै, बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटै अभमान, सो जन नानक दरगै परवान, कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार, अनक जतन कार्यात्म नहीं द्रवै, हर दरगै कौ कैसे गवै,
आप सकौ जो भला कहावै तसै भलाई निकट न आवै सर्व की रेण जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोए जब है जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिखिया के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज सुपन मनोरथ बिरथे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए वडभागी किसै प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहां विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे बबेक आपे एक आपे अनेक मरे ना बिनसै आवे ना जाए नानक सदी रहा समाए आप उपदेसै समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो अपन विस्थार सब कश उसका ओह करने हार उसते पिन कहो किश होए थान थन अंतरे कै सोए अपने चल तो

संत के दोखी का उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिललाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पाप की ईंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल

करता कह। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी, त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किरंत ना पाया, जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवै से, ते गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवै जाए, ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे करंग, नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभु नासी एकंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए, नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाय समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाए तिसै सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत तां की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योत पावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राजन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख कट नहार, जा कै संग तरे संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जनमान्या, करन करावन तिन मूल पछान्या, जा कर दे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पेना कहना जाई, बूझे बूझन हर बबेक, नारायण मिले नानकेक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर कौ सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कह रंग, सेवक कौ प्रभ पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै,
अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमत कोई ना लखे, प्रभु के सेवकों को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके कर्तब बिरथे जात, मारे ना राखे अवरना कोए, सर्वजियां का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मंत्र तृपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवरना ही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नाम नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जेहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह सो आए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखाना, तिसका गुण कह एक न जाना, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर से आणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका ना, तिसके संग सिख उदर, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर से की करे प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिखे बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर सिखा हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कहो कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुरवट भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसव चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जेहबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सतबलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਏ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਪਾਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਪਾ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੋਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕਿਹੋ ਤਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰਿਓ ਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰਵਥ, ਇਹੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਅਨਕਿਓ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ, ਤਾਂ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਪਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਕਿਉ ਭਾਵ ਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਤਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬੰਤਾ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮਨ ਸਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਜੈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ।

सुनत कह तो रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हों मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावै सजतना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख। एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हरियाप, पूर्ण पूर रहो प्रव्याप। अनक विस्थार एक ते पे, एक आराध प्राश्त गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखे आसे जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नावरते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै। गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भगति तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत, हम निर्गुणी आर नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडे आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब आकार हो कछ ना दृटेता, पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संक मात, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरक शोक सह व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नान करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मोत कौ किस कौ गनी, जब एक हर अगम अपार, तब नरक सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तर, तब कवन निडर कवन कत डर, आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकर अगम अपार, अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन्म मरण को कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब आप गत्या गोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बादे, अपने आप ही चर जा, नानक अपन रूप आप ही उपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तै शरशिदर लगत कौ कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव, तै किसे भूख कवन त्रिपतावै, करण करावन करने हार, नानक करते का नाह सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कतेब कहा कूचीन, जब अपने आप उरतार, तब सगन अब सगन कहा विचार, जह अपन ऊच अपने आप नेरा, तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी का जानो आप, जय अशाला शेदा भेद

एक भगवंता कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपने आप आपति आरा तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊचा नानक आप सको आपै पहुचा, जय आप रचि।

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने कर्तव जानै आप, अंतर जामी रहे ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित त्यागो त्रंग संत जन।

साध के बचन अमलीक लाल एहरतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नम निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ता की गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ता के कर्म सब ते ऊच ता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पात होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो वंदना त्याए गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताँ की आस कल्याण सुख जाते सब कश होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवरना कोए वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए साध संग मेरे मीत रहाओ सलोक करो वंदना अनक वार शरण परो हर राए प्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत

को खाट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोहे गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथे अनेक उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुणअंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यो बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान परम बिनसेओ पाई शरण दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिराए सा संग लिव लाए खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए सलोक संत मंडल हर जस कथ बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक शिष्यो लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय दुख हरै पव जल तरै मन चंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहारणै हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाइयै तजियै अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच्च बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिया नानक नाम हर रंग सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार पौड़ी नौमी नवे शद्र अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारत्रे रमै बकै साध निंद करन सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कै ताई अगन न निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो जत देखौं तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन संतोख नाम जप लीने करनी सुनिया जस गोपाल नैनी पेखत सा दयाल रसना गुण गावै बेअंत मन मैं चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाई है नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है सलोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोबिंद न जानिए नानक सब बिस्माद पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इनविद वर्त संपूर्ण भया तावत मन राखै कठाए मन तन शुद्ध जपत हर नाए सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म सलोक दुर्मत हरि सेवा करी पेटे साध कृपाल नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान हर की भगत करो तजमान हरे अमृत पान करो साध संग मंत्र तासै कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब को संतोख है पंच पूव आत्मा हर नाम रस पुख है गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है नानक राम रमत फिर जो न आई है सलोक
तीन गुणा मैं व्यापिया पूर्ण होत न काम, पतो धारण मन बसै नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो। हर सोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ। दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो। हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम। नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप। दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश समय प्रपेख। जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल। सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद। संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव। मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव। टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम। दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम। शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन। आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन। हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम। गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ। जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जा का हथ। गुण निदान गोबिंद गुर, किया जा का होए। अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए। पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार। संत सहाई सरन योग, आठ पहर नमस्कार। अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण। पतो धारण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय। मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार। को उपदेसै को दृढ़ै, तिसका होए उधार। किलबे काटै होए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए। हलत पलत मुखि उजला, नै पोहै तिसमाए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत। सो सूरा कुलवंत सोए, जिन भजिया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरै सिमर चंडाल। जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसै रवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनों समत सब कोए। एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए। नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावै कोए। महला चौथा, हम है माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार। लहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हम मैं मैल बिख उतर, हर अमृत हर ओर धार। सब कार्य तिन के सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सृजनहार। पौड़ी
तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब ते आईंदी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई गुरमुखा नो फल पाईंदा सच नाम समाई वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वड्याई श्लोक महला चौथा विण नावै होर सलाहना सब बोलन फिका साध मनमुख अहंकार सलाह दे हौ मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरै खप जावै सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम ते आई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिनी तू एक मन सच ते आया तिनका सब दुख गवाया तेरा श्री को नाही जिसनो लवे लाए सुनाया तो जेवड़ दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहेबा सच्चे सच नाया श्लोक महला चौथा मन अंतर हम मैं रोग है प्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मेरे सतगुर साधु सजना महला चौथा मंतन रत्ता रंग स्यों गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर सरनागति हर मेले गुर साबास पौड़ी तू करता पुरख या गम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तो जेहा तू है पड़ी है तू घट घट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़िया तू सच्चा सब सदा खसम है सबदू तू चढ़िया तू करै सो सच्चे होए सी ता कायत कड़िया श्लोक महला चौथा मैं मन तन प्रेम परम का अठे पहर लगान जन नानक कृपा धार प्रभ सतगुर सुख वसन महला चौथा जिन अंदर प्रीत ब्रह्म की ज्यो बोलन तवै सुहान नानक हरे आपे जानदा जिन लाई प्रीत पेरन पौड़ी तू करता आपा पुल है पुलन विच नाही तू करै सो सच्चे भला है गुरशब्द बुझाही तू करण कारण समर्थ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद ते आही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छडाही श्लोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सज्जन मिलिया जन नानक सुख सवन महला चौथा सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विच्चों तिष्टिया ना कोए सतगुर सबना दा भला मनाएं दा तिसदा बुरा क्यों होए सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए नानक करता सब के जानदा जिदू किश कुजा ना होए पौड़ी जिसनो साहेब वड्डा करे सोई वड़ जानी जे साहेब पावै तिस बख्स लए सो साहेब मन पाणी जे कोई उस दी रीस करे सो मूढ़िया जानी जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी नानक सच्चा सच है बो सच समाणी श्लोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है निरपौ निरवैर निरंकार जिन जपिया एक मन एक चित तिन लथा हो मैं पार जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार सतगुर विच आप वरतदा हर आपे रखण हार धन धन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार जन नानक तिन कौ वारिया जिन जपया सृजन हार महला चौथा
आपे धरती साजिया नु आपे आकाश विच आपे जंतो पाया नु मुख आपे दे गिरास सवे आपे आवरदा आपे ही गुणतास जन नानक नाम ते आए तू सब किलवे कटे तास पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे भावै जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ न आवै तिन के मुख दर उजले जिन हर हिरदय सच्चा भावै कूड़ यार पिशाह सटियन कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावै मोह काले कूड़ यारियां कूड़ यार कूड़ो हो जावै श्लोक महला चौथा सतगुर धरती धर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए गुरसिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगह सच्ची पैन आए एक ना अंदर खोट नित खोट कमावै ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए जा सतगुर सराफ नदर कर देखै सुभाव गीर सब उगड़ आए ओए जेहा चितवै नित तेहा पायन ओए तेहो जेहे दिये बजाए नानक दुही श्री खसम आपे वरतै नित कर कर देखै चलत सवाए महला चौथा एक मन एक वरतदा जित लगै सो थाए पाए कोई गल्ला करे कनेरियां जे घर वथ होवै साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवै हंकार ना विचों जाए हंकारियां नो दुख भुख है हथ तड़ै कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुजी ना रहै मुलम्मा पाज लै जाए जिस होवै पूर्व लिखिया ते सतगुर मिलै प्रभ आए जो लोहा पारस भेटिया मिल संगत स्वर्ण होए जाए जन नानक के प्रभ तू धनी ज्यो पावै तिवै चलाए पौड़ी जिन हर हिरदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगुण सब जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो वंदन हर हर नाम ते आवै हर हर नाम रमत सो संजम हर नाम में ही तृप्तावै हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावै जो चित लाए पूजे गुरमूर्त सो मन इच्छे फल पावै जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार देवावै फिर ओह वेला उस हथ ना आवै ओह अपना बीजिया आपे खावै नरक कोर मोह कालै खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावै फिर सतगुर की सरनी पवै ता उबरै जा हर हर नाम ते आवै हर बाता आख सुनाए नानक हर करते ए वै भावै महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मन्नै ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझै अणहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया ओ गल फरोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसै ना पाया ओह घर घर हंडै जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै उसदा पास छड गुर पास बह जाया जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपर आया गुरसिखा वड्याई पावै गुरपूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लै जे सतगुर टिके सो सतगुर जे साहित्य आईंदा सच सच्चा सतगुर एके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके ओए बोले किसै ना भावनी मोह काले सतगुर ते चुके
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਭ ਖੇਤ ਹੈ, ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਸਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਈ ਅਨ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਮੂਲ ਗਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਬੀਜੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਖੇਤ ਜਮਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਫਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਜਮ ਚੂਹਾ ਕਿਰਸ ਨਿਤ ਕੁਰਕਦਾ, ਹਰ ਕਰਤੈ ਮਾਰ ਕਢਾਇਆ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਜੰਮੀ ਭਾਉ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਇਆ, ਤਿਨਕਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਸਭ ਲਾਇਓਨ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਸਭ ਜਗ ਤਰਾਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾ, ਰਾਤੀ ਉਗੈ ਦੱਬਿਆ, ਨਵੇਂ ਸੁੱਤ ਸਭ ਢਿੱਲਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੈ ਸਿਰ ਜੋਰਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਭਲਾ, ਜੋਰਾ ਦਾਖਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਮ ਦੇ, ਸੇ ਅਪਵਿਤ ਅਮੇਦ ਖਲਾ, ਕਾਮ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧ ਨਰ, ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁਛ ਚੱਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਸਤਪੁਰਖ ਭਲ ਭਲਾ, ਜੋਰਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਆਪੋ ਪਾਇਨ, ਹਰ ਖੇਲ ਸਭ ਖਿਲਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ, ਨਾਨਕ ਪਲ ਭਲਾ ਪੌੜੀ, ਤੂੰ ਵੇਹੋ ਤੂੰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਅਥਾਹੋ ਹੈ, ਅਤੁਲ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀਐ, ਸੇਵੜ ਪਾਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿਚ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਚੜ ਪੜੀਐ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਖਮਾਇਆ ਨੋ ਚਖ ਮਰਦੇ ਘੜੀਐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਾਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਝੂਠ, ਓਏ ਆਪੇ ਸੱਚੇ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਘਾਲਨ, ਕੂੜਿਆਰ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਕਿਤੇ ਥਾਏ ਭਾਲੇ, ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਵੈ ਨਾਹੀ, ਤਿੰਨਾ ਮੋਹ ਭਲੇਰੇ ਫਿਰੈ ਦਈਏ ਗਾਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੇਰੀ, ਸੇ ਕਿਚਰ ਕਵੇ ਰਾਈਅਨ, ਮਨ ਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਥਾਏ ਰੱਖੈ, ਉਹ ਆਪ ਵਰਤੈ ਆਪਣੀ ਵੱਥ ਨਾਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕ ਨਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੈ, ਇਕ ਆਪੇ ਵੱਖ ਕੱਢੈ ਠਗਵਾਲੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਦਈਏ ਆਂਦੇ ਰਾਸ, ਤਿਨ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕ

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निरजास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारिया नूं।

नाही। तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया, पाई एहो तपा ना होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया। सत पुरख की तपा निंदा करै, संसार की उस्तति विच होवै। एत

सब गया तपे का कहलिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वेखा लिया। धर्म राय जम कंकरा नो आख छड़िया, एस तपे नो तिथे खड़ पायो जिथे महा महा हत्यारिया। फिर एस तपे दे मोहे कोई लगो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर वर्तिया सो नानक आख सुनाया, सो बुझे जो दिये सवारिया। महला चौथा हर भगता हर आराध्या, हर की वड्याई हर कीर्तन भगत नित गाम दे, हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नामे दी वड्याई, बगसिया नो नित चढ़ाए सवाई। हर भगता नो थिर करी बहालिया, नो अपनी पैज रखाई। निंदका पासो हर लेखा मंगसी, बहु दे सजाई। जेहा निंदक अपने जीए कमाम दे, ते हो फल पाई। अंदर कमाना सर पर उगड़े, पावे कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक ते देख विकसिया, हर की वड्याई। पौड़ी महला पंजवां भगत जना

ग्रहो तान सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम व्यापारी नानका वड भागी पावो पौड़ी। जो तुद पावे सो भला, सच तेरा पाणा, तू समय एक वरतदा समय समाणा, थान थन अंतर रव रहया जी अंदर जाना, सा संग मिल पाई है मन सचे पाणा, नानक प्रभ शरणागति सद सद कुरबाणा। सलोक महला पंजवा, चेताई ता चेत साहेब सच्चा सो धनी, नानक सतगुर सेव चढ़ बोइथ पौ जल पार पौ। महला पंजवा, वाउ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार, नानक नाल ना चलनी जल बल होए शार पौड़ी। से उबरे जगे विच जो सच्चा रखे, मोह डिठे तिनकै जीवी है हर अमृत चखे। काम क्रोध लो मोह संग सादा पखे, कर कृपा प्रभ अपनी हर आप रखे, नानक चलत ना जापनी को सकै ना लखे। सलोक महला पंजवा, नानक सोई दिनस सुहावड़ा, जित प्रभ आवै चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा, नानक मित्राई तिस स्यों, सब किश जिसकै हाथ, कुमित्रा से ही कांडी है, एक वेखना चलै साथ पौड़ी। अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई, जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। सलोक महला पंजवा, डिठड़ो हबठाए ऊना काई जाए, नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा, दमनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे, वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी, जो जन पेटै साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी, मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी, तोसा दिचै सच नाम नानक मेहमानी। सलोक महला पंजवा, अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल ना उतरै भुख, नानक सच्चे नाम बिनु किसे ना लथो दुख। महला पंजवा, मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच ना लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमल एक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा, पत ते उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वछल तेरा बिरद है जो जुग वर्तंदा, नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा। सलोक महला पंजवा, चिड़ी चोहकी पहु फुटी, वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। महला पंजवा, घर मंदर खुशियां तही, जह तू आवै चित, दुनिया कियां वड़ियाईयां नानक सब को मित पौड़ी। हर तन सच्ची रास है किने विर लै जाता, तिसे प्राप्त पाए रहो जिस दे विधाता, मन तन पीतर मौलिया हर रंग जन राता, साध संग गुण गाया सब दुख है खाता, नानक सोई जीविया जिन एक पछाता। सलोक महला पंजवा, खखड़िया सुहावियां लगड़िया अककंठ, ब्रह विछोड़ा धनी स्यो नानक सह सह गंठ। महला पंजवा, विसारें दे मर गए मर पे ना सकै मूल, वे मुख होए राम ते जो तस्कर उपर सूल पौड़ी। सुख दान प्रभ एक है अवनासी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया, ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया,
ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਪਉ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜਣਿਆ ਤੁਸ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਹਰ ਰੰਗ ਮਣਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੈ ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲ ਦੋਜਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਸੂਲ। ਪੌੜੀ ਤਿਸੈ ਸਿਰੇ ਵੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ ਜਿਸਦੈ ਨਾਉ ਪੱਲੈ ਐਥੇ ਰਹੋ ਸੁਹੇਲਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਘਰ ਬੰਧੋ ਸਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗੜ ਥੰਮ ਅਹੱਲੈ ਓਟ ਲਹਿਓ ਨਾਰਾਇਣੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲੈ ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਨ ਹਾਰ ਤਿਸ ਦਰ ਗੈ ਮੱਲੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਦੇਵਣ ਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਪੌੜੀ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈਐ ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਮਰਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤਿਸੈ ਹੀ ਜਰਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੈ ਝਰਨੇ ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੇਵਿਐ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਛੁਟੈ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰਉ ਨਾਮ। ਪੌੜੀ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਲੱਦਾ ਸਾਦਾ ਸਰਨੀ ਜੋ ਪਵੈ ਸੋ ਛੁਟੈ ਬੱਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਬਨਾਸੀਐ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਦੱਦਾ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ ਪੜ ਬੁਝ ਸਮੱਦਾ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਣੀ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਦਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

भिखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभु कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरि अंगूरी गदहा चरै नित उट हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट भई खेड लेले कहो चूंगै नित भेड राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत भई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तब की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज।

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

सूर चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चब कुमारों। कहत कबीर पले असवारा, बेद कतेब ते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरे काहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निजपत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

दुचित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी धारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछै जो जल बरखै, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जस सुनै ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहज। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाले, आप गए और नहूं कहले। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर नामा।

मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए, अपन कया ना लेही। सर जियो काटे निर्जियो पूजे, अंतकाल कौ भारी, राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया, बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है, बौना पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ असर रखो, इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पत प्रगासा, सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणै तनख चढ़ाई है, एहो जग बेदया भाई, दैद सिर बूंडी पवन चुलावै, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अनपव के देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्र खट भेदे, सुरत सुन अनरागी, आवै ना जाए मरै ना जीवै, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अगल पई अवरै, ना तर था बेगाना रहाओ। निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मान्या, अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कहिया, ऐसा कोई बबेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया, तैं उत्पत पर लो नाही, जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाज दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तै नाही, रात दिन सतै नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। आगमा गोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे, पवन पूंजी परगासे हो, तृष्णा गूण परी कट पीतर, इन बिद टांड बिसाहे हो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार की ओ बनजारा रहाओ। काम क्रोध द्वय पहे जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान निबेरै, टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैल एक।

प्यारे किरत की बांधी सब फिर है, देखो बिचारी इसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी पई निराशी उठ चली चित बंद ना धीरा, हर की चरनी लाग रहो पाई सरन कबीरा गौड़ी। जोगी कह जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो ते बांधे बो फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बड़हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै इन बिद माणक लही है। तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है, कहो कबीर गूंगे गुड़खाया पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एको अंकार, सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़नहारो सदा अतीता एक ही है किसमाही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगर पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज अकीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये पाचन से अडाई। जौ कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दोह मिल कारज उपजै राम नाम संयोग। लोग जाने

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे डगमग छाड़े मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापो रे। गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन कौ खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ, निंदा होए ता बैकुंठ जाइए। नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसै कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मै रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास उजारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्तन उप ना पाई। कहत कबीर नवै कर मूसे, दसवें तत् समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना। शिव सनकाद जास गुण गावै, तास बसै मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मैं ध्याना ना। बिखै रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लखै ना कोई। अल्लै लहो तव क्या कहो, कहो ताको पुकार, भटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लै लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग छेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार आद मैं जाना, लेखियार मेट ताहे ना माना, ओवंकार लख जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जसावा, खसमै जान खिमा कर रह, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कतै ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट शाड अव कट कत्तावा। गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, त चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, त चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्र पत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ।

मन मानै मरमी होए सो मन को जानै मत कोई मन मिलता बिलमावै मगन पया ते सो सच पावै मम्मा मन स्यों काज है मन सादे सिद्ध होए मन ही मन स्यों कहे कबीरा मनसा मिलिया ना कोए एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जियो एहो मन ले जाओ उन मन रहे तौ तीन लोक की बात कहे यैया जौ जाने तौ दुर्मत हानु कर बस काया गाओ रण रूतो पाजे नहीं सूरो थारो नाओ रारा रस निरस कर जानिया होए निरस सो रस पहचानिया एहरा छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया एह रस नहीं पावा लल्ला ऐसे ले मन लावै अंत ना जाए परम सच पावै आर जाओ तहां प्रेम लेवलावै तो अलह लह लह चरण समावै ववा बार बार बिसन सुमार ना आवै हार बल बल जे बिसन तना

ससा सोनी का कर सो दो, घट परचा की बात न रो दो, घट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ। खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो भव जल तरत ना लावे बारा। ससा सो सह सही सवार, सोई सही संदेह निवार, अल्प सुख शाड़।

तवै मनमाना। है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापै बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावै, सोग मिटै सब ही सुख पावै। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोग कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थित्ती कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थित्ती सात वार, कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पे ओ, आपे करता आपे दे ओ। थित्ती अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द।

परवा प्रीतम करो बिचारो, घट में खेले अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तसवीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

अकाल मूर्त अजूनी स पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सोदर तेरा कहा सो कर कहा जित पै सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिशो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाय तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सा साहेब।

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहब साचा नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवे काट ना जाए।

तू सर्वे पूर रहया लिव लाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूपया पारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश ली जी ली जय रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहले कीचे अरदास, पाप उन्दो साखी पास, जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत देहे पे ही को पावे, तुझे आपे पावे तवे चलावे। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शह भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई, जित कार्ज सतसंतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। पणत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नजर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला, गृह बन समसर सह सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ। सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिख्या सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिफत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जग दिसै अंस, जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਭਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਇਹੋ ਜਿਤ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਮਿਟੈ ਸੱਚ ਨਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾ।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन आवे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिम राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सचनाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ नानक बख्श।

एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठवर ना पावे, ऐसे कर्महीन हर नाम ना त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भौजल, गुर सबदी हर पार लंघाई रहाओ। जिन को आप

बुरा पला कहो किसनो कहिय, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मज्जन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहार ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दो जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन होर

काया ब्रह्मा अमन है धोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल, ऐथे उथे निभि नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर।

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्से

नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हाँ पापी तू बख्शनहार। तेरा पाणा सब किश होवै, मन अठकीचै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै। तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर तोवा, मेरा सौ जागै हो निष्परसोवा। इओ क्यों कंत प्यारी होवा, सौ जागै हो निष्परसोवा। रहाओ आस प्यासी से जयावा, आगे से पावा के ना पावा, क्या जाना क्या होए गारी माई। हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ, प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी। गया सो जो बन तन पछतानी, अजय सो जागो आस प्यासी, पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ। हाँ मैं खोए करे सिंगार, तव कामन से जरवै पतार। तव नानक कंते मन पावै, छोड़ वडाई अपने खसम समावै। रहाओ आसा महला पहला, पेव कड़ैतन खरी।

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पाव कितने किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो भया सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त्र समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजय कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबू ने खूट सुना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जदी जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द बंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रहै जैसे भवै उदासे। मन मेरा दयाल से ती थिर न रहै।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेसर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ जब से जय आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिए भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद पावे नानक तां को मिले वडाई साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बाजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मने मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करे पला कर मानो सह

भगत रता जन सह सुभाए, गुर कै पैसा चै साज समाए, बिन गुर पूरे भगत ना होए, मन मुखरुने अपनी पत खोए, मेरे मानो हर भज मेरे मानो हर जप सदा ते आए, सदा आनंद होवे दिन राती, जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सरन आए, सदा सूचे साज समाए, हर प्रभ वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार, ऊतम रतन जवाहरिया पार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार, आसा महला तीजा, गुर सायर

ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुरते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जम्मण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सै समाए, नावै जेवड़ होर धन नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरा शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे वजाए, एहो मन अंधा बोला है, किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले ना सो जी पाए, गुरमुख भगत कड़चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरै, गुर प्रसादी पव जल तरै, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आवसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, निहचल भगत हर सो चित लाए, भगत रते तन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवा काफी महला तीजा, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, हर कै पाणे सतगुर मिले, सच सोजी होई, गुर प्रसादी मन वसै हर बुझै सोई, मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाओ, इस जोग में निरपो हर नाम है, पाईए गुर विचार, बिन नावे जम कै वस है, मन मुख अंध गवार, हर कै पाणे जन सेवा करे, बूझे सच सोई, हर कै पाणे सा लाही है, पाणे मन्या सुख होई, हर कै पाणे जन्म पदार्थ पाया, माति उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू करता सचियार मंडा साई, जो तौ पावै सोई थिसी, जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन्ना वर्तन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जान आए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा, किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है, एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी,
जन्म मरै जुए बाजी हारी, हमरे हर धड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सतसंग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा भाव तड़े बह पावै, पराया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्टि जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया। गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ। मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग। दूजे पाए पवै बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पी आया, गुरपूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार। नाम जपो मेरे साजन सह।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं

दुख रोग भय गतंते, मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुरसबदी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुरसीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अगाए। जन्म दोख परे मेरे पछ, अब पकड़े

बिगड़ रूप मन में अभमान, सोहने स्वरूप सुजान बिचखनो, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाक साल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी, सोयना रूपा।

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टेचाम, इस ऊपरले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइए हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मन न रह कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको पर मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रैन पई तब अंत न जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, परम परम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुखे अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माही दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा साहो। गुर कृपा ते एह मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई। सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा। सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सरसद ही पर पूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राए, सुख रैण में हानी सहि सुभाए। आसा महला पंजवा, कर कृपा हर प्रगटी आया। मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई। पाहे न जाले जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ। तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया गाए। सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाड़ परानी। जो जन्मे सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ। दिन ते सर

जो तू करे सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सदही संगा। कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोम नहारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे दास

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन। आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया। पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही।

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरा हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन सचे नाए अठसठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर

गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जाप ताप कश युगत न मोरी, गुर नानक शरणागत तोरी। आसा महला पंजवा ते पदे दो, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन मैं ले जाता। हर रस के माते मन सदा आनंद, आन रसा मैं व्यापै चिंद। हर रस पीवै अल मस्त मतवारा, आन रसा सब हो चेरे रहाओ। हर रस की कीमत कही ना जाए, हर रस साधु हर सुमाए। लाख करोरी मिले ना के हे, जिसे प्राप्त तिस ही दे हे। नानक चाख पए बिस्माद, नानक गुरते आया साद। ईत ऊत कत छोट ना जाए, नानक गीदा हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावै, छुटकै दुरमत अपनी तारी। होए निमाणी सेव कुमावै, ता प्रीतम होवै मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी, दुख भूख मिटै तेरो सहसा, सुख पावै तू सुख मन नारी। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, आत्म सुध बिख त्यास निवारी। दासन की होए दा दासरी, ता पावै सो बाहर द्वारी। इही आचार इही ब्योहारा, आग्या मान भगत होए तुम्हारी। जो एहो मंत्र कमावै नानक, सो भौजल पार उतारी। आसा महला पंजवा, दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम। मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै। जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ जप तप संजम तर्म ना कुमाया। सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की रखो शर्मा, आसा महला पंजवा। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही। तू साजन संगी पर मेरा, काहे जी डराही। तुमरी ओड़ तुम्हारी आसा, बैठत उठत सोबत जागत। विसर नाही तू सास गिरासा, रहाओ राख राख सरन प्रभ अपनी। अग्न सागर विकराला, नानक के सुखदाते सतगुरु। हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा, हर जन लीने प्रभु छड़ाए। प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या, ताप मुआ बिख खाए। रहाओ पाला ताऊ कछु ना व्यापै, राम नाम गुण गाए। डाकी कोचत कछु ना लागै, चरण कमल शरण आए। संत प्रसाद पए कृपाला, होए आप सहाय। गुण निदान नित गावै नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ। सुख पाए दुख बिन सिया थाओ, ताप गया बचन गुरपूरे। अंध पयासा मिटे विसूरे, रहाओ जी जंत सगल सुख पाया। पार ब्रह्म नानक मन ध्याया, आसा महला पंजवा। बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहना बाला बूढ़ा पाई। रहाओ नानक दास सा सरनाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास। सास संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे। शीतल सांस सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे। रहाओ कहो नानक जा के पूर्ण कर्म, सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म। दूजे करके चौतीस, आसा महला पंजवा। जा का हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। रहाओ कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली। साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा,
काम क्रोध माया मत मद सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच ए अपने गृह भीतर वारे जन्म मरण चुके सब पारे मिलत संग पयो मन निर्मल गुरपूरै लैखन मैं तारे रहाओ सब की रेन होए रह मनुआ सगले दिस मीत प्यारे सब मदे रव्या मेरा ठाकर दान दे सब जी सुमारे एको एक आप एक एक एक है सगला पा सारे जप जप होए सगल साथ जानो एक नाम ते आए बहुत उधारे गहर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किश पारा वारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे आसा महला पंजवा तू बेअंत अवगत या गोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करै चतराई जा सबके तुझे मजार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार देहो सुमत सदा गुण गावा मेरे ठाकर अगमे अपार रहाओ जैसे जनन जठर मैं प्राणी ओरेता नाम आधार आनंद करै साथ साथ सुमार ना पोहै अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी दे अंतर गुरपूरे कै आधार गृह मंदिर महला जो दिसै ना कोई सांगार

हर आज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगह काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याई है रहाओ महाबचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा, मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला, चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता सियाण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया, जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवै पराई, अपना कीता पावै, इहा सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावै, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच ना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ, किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना रखे, ओ किस पै करे पुकारा, निंदक की गत कत हू नाही, खसम ए वै भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहा काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए, गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरई, नाम न सुनई डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने, उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रख है, मन में एक अंकारे, तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखावज ताल कुंगुरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ, प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै, कर संग साधु चरण पखारै, संत तूर तन लावै, मन तन अर्प तरे गुरु आगै, सत पदार्थ पावै, जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਕੇ ਹਰ ਕੂਕਰ ਤਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ।

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वडे आई ता तेरी वडे आई, ए त्यो तुझे ते आओ, नानक प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुरु, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग सा संकीर्तन गाई, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किश हुआ, यवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काड लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्य सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना को भख। ओहो सुख ओहा वडियाई, जो प्रभ जी मन पाणी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंगमाणी। तुदया गै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ना जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सा संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आई है। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हराओ रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ता कै संग तरओ रे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना, सतगुर पेट भया मन निर्मल, जापे अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया। गुर प्रसाद पहे जन्म मुक्ते, हर हर नाम आराध्या, राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने पाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद गुरबाणे।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई यो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सपने नाहें।

संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निक्षा फूकता हुए गए सुहा ऊंचे मंदिर महल अरानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिने उपाहा तिने बिनाहा रंगरसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कनेरी जो मिली है तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह बाट काट करे बन बन जो है मन तन लागे हुए कै मीठी गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी अगर उसके वड्डे ठगाऊ छोड़ै नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन पया आनंद पहु चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक

वर्तन जाके केवल नाम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जाके एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जाने, कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली, ताका संग बांछे सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजे गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जप एक है नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग, जिस पेड़ लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद ओ आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावे रहाओ, वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकि पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गत में तो कथन ना जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ, मोहे गरीब को लिहोर लाए, नानक आए पै सरनाए, आसा महला पंजवा, आठ पहर उद के सुनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही, बहुर बहुर तिस लागे पाई, साल ग्राम हमारे

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, तां का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है साधा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिस ही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नोदान। आसा महला पंजवा पंचपदा, जे पेंड लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ताकी परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग, आसा महला पंजवा। मीठी आग्या पिर की लागी, सौकन कर की कंत त्यागी। प्रे सोहागन सिंगार करी, मन मेरे की तपत हरी। पलो पयो प्रे कहया मानिया, सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार, ओह अविनाशी अगम्या पार। ले पखा प्रे चलो पाए, पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना शोभावंत, क्या जाना क्यों पानी कंत। मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी, कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा, सुख सहज मेरा तन सोहागा। कहो नानक मोरी पूर्ण आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचय मनमुख मूह राखा गुर नानक बहा पकर हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसर

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर सच

जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटया सब मैं लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहेब कै मन भावै। वदी वेल बहु पीड़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी छन्नी नाही बात गुरु नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवां गुर पूरे राख्या दे हाथ प्रगट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण कहो नानक गुर कौ कुरबान। आसा घर अठवां

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां, सर्व सुखा मैं पालिया हर जेवड़ ना कोई, गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटे महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार, ओह आदि जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवा।

साई अलख अपार पोरी मनवस दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नस हाउ मंजा कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मंतन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेदक तेव संसार।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दासतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परै सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया। रहाओ कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वडपागा, ओह सुहेला सद सुखी सब प्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा। रहाओ दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया। रहाओ वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी। रहाओ परता कह सो मानिए, एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिए एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिशायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तौ लो जो मन के परमा, परम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे। रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसम बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ। रहाओ सगन अप सगन तिस कौ लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सभी उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक दूसर कह पह जावो, हाँ मांगो आन ल जावो। सगल छत्रपत एको ठाकर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो, कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगा सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रैन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचों ही मोए शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भागे नाही मोहकम फौज ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मन ते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक अरहारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सा संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल सियान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापौजल लंघिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संगे एक स्यो लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जन त्यावे तरण कौ संसार कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण सरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रभतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत। सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म
गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवां, उद्यम करो करावो ठाकरो, पेखत साधु संग, हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभरंग। मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हृदय, होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ। दया करो किरम अपने को, यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश नाहे, ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किलविख काटे, मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पव नासै, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां, अगमे गोचर दर्स तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ धारी, सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव, मल मूत मूड़ जे मुग्ध होते, सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब श्रेष्ठ तरता, सब मैरिया समाए, धर्म राजा बिस्माद होवा, सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर पणिया, कल युग ऊतमो जुगा माहे, अह कर करे सो वह कर पाए, कोई ना पकड़िया किसै थाए। हर जियो सोई करे, जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़, नानक दान मांगे, अपने संतां देह हर दर्स। राग आसा महला पंजवा, कर तेरवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनी संगारे, नरक पवंते नरक पड़ंते, तिनके कोले उदारे, कोय न जाने कोय न माने, से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा देव कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटंब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सतसंगे, नानक शरण आहे, आसा महला पंजवां ते पदे, ओहा प्रेम पिरी रहाओ। कनक माणक गज मोतियन लालन, नै ना नहीं राजन पागन, हुक्म ना साधन, किश किश ना चाही, चरणन सरनन संतन बंदन, सुखो सुख पाही, नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री। आसा महला पंजवां, गुरै दिखायो लोए ना रहाओ, इते उते कट कट कट कट, तू ही मोहेना, कारण करना तारण तरना, एक है सोहेना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोएना। आसा महला पंजवां, हर हर नामया मोला, ओहो सह सोहेला रहाओ, संग सहाई छोड़ ना जाई, ओहो अगे अतोला, प्रीतम भाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक एहो हर का चोला। आसा महला पंजवां, अपनी भगत निबाहे, ठाकर आयो आहे रहाओ, नाम पदार्थ होए सकार्थ, हृदय चरण बसाहे, एह मुक्ता एह जुगता, राखो संत सगाहे, नाम ते आवाओ सह समावाओ, नानक हर गुण गाहे। आसा महला पंजवां, ठाकर चरण सुहावे, हर संतन पावे रहाओ, आप गवाया सेवक माया, गुण रस रस गावे, एक आसा दर्श प्यासा, आना पावे,
ਦਇਆ ਤੁਹਾਰੀ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਸਿਮਰ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਓ, ਨਾਮ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਆਈਐ ਸਰ ਫਲ ਪਾਈਐ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੀ। ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਆਹੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸੋ ਮੂਵਾ ਰਹਾਓ, ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸਰਵ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸੋ ਜਨ ਸੁਖੀਆ ਹੂਆ ਰਾਜ ਕਹਾਵੈ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਾਂਧਿਓ ਨਲਨੀ ਪਰਮ ਸੂਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਸੋ ਜਨ ਨਿਚਲਥੀਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਚਉ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਨਿਹੋ ਨਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਲੀਜੈ ਹੋ ਮਨ ਦੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਹੋ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਿਲ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮ ਬਿਨ ਧੀਰਜ ਕੋ ਨਾ ਕਰੈ ਰਹਾਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਹੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਕਰ ਥਾਕੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਵਸੈ।

आओ कृपा पाए सहजाए दरसाए अबरातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीतनाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा को बिखमगार तोरै आस प्यास तो हो।

गुण गोविंद गावो, अन दिनो प्रभु त्यावो, भ्रम पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै, आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभु गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवा। हरख सोग बैराग आनंदी, खेलरी दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु, खिनहु उठतायो, खिनहु रस भोगन खिनहु, खिनहु तजायो। खिनहु जोग ताबो पूजा, खिनहु परमायो, खिनहु कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा, कर सतारवा आसावरी, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तो मिलिया गुर कृपान में।

तौ चूकी सगल कान लैनो जिस मथान हा पै पाव को पार प्राण हा निज कर तसै थान हा हर रस रसै मान हा लाथी तिस पुखान हा नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीहा जपिय सह तुनिहा साधु रसन पनीहा शूटन बिद सुनिहा पाइये वडपुनी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनिहा सर्व का प्रभ तनिहा दुलभ कल दुनिहा दुख बिनासनी हा प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविय हां अलख अपेविय हां तां स्यो प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां गुरते जाने हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निधान लहो हां सुख समाइये मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ता को सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगतां शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूह हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां निमख ना विसरे हां तिस बिन क्यों सरे हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर न सुजे मूहा करे सो होइए हां सह सुख सोइए हां तीर्ज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतरगत बुझे हां सबके सब केशव तिस सुजे हां पतत उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास केले वेख दो काटे हर नाम परगास। कर बिचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है करे आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मलो अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पेल। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता।

की इन पै निरंकारी एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अह निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शै नाम जपाए दूत ना लाग सकै गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला जो भावे त्यों रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देख विण गुर शब्द जन्म के लेख देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भर पुर तार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही जाकी भगत हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि ध्यान छूटे गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार बंधन कर्म धर्म हो किया बंधन पोत कलत मन बिया बंधन किरखी करे किसान होमे डन सह राजा मंगे दान। बंधन सबदा अन विचारी तिप्त नाही माया मोह पसारी बंधन शासन चैतन जाए बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुरु राखे बंद ना पाई। राग आसा महला पहला अष्टपदियां करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टिया मांगी पाए संदूर से सरकाती मुनियां गल विच आवै धूड़ महला अंदर होंदिया हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा यंतना पाया कर कर देखै वेस रहाओ। जदो सियां वी आहिया लाड़े सोहन पास ही डोली चढ़ आईया दंद खंड कीते रास उपरो पानी वारी है चले चिमकन पास एक लख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी शोहारे खांदियां मन से जड़िया। तिन गल सिलका पाईया तुटन मोसरिया तन जो बंदो वैरी होए जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे वड्याई जे पावे दे सजाए अगों दे जे चेती है ता कायत मिले सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया रंग तमा सह चाहे। बाप रवाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए एक ना वक्त खुवाई है एक ना पूजा जाए चौके बिन हिंदवाणिया क्यों टिके कड नाए। राम न कबहू चेते ओ हुण कहन ना मिले खुदाए एक घर आवे अपने एक मिल मिल पुछे सुख एक ना एहो लिखिया बैबै रोवे दुख। ज्योत इस पावे सोथी है नानक क्या मानुख आसा महला पहला। कहां सो खेल तबेला कोड़े कहां पेरी सैनाई कहां सो तेग बंद गा ढेरड़ कहां सो लाल कवाई कहां सो आरसिया मो बंके एथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई ए कड़ी मैं थापो थापे जरवण देवे पाई रहाओ। कहां सो घर दर मंडो मेला कहां सो बंक सराई।

कहां सो सेज सुखाली कामण जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हर मां होइया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती, इन जर कणी खुवाई, पापा बाजो होवे नाही मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता खुसले चंग्याई, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए जा मीर सुनिया ताया। थान मुकाम जले बिज मंदर मुछ मुछ कोयर रुलाया, कोई मुगल ना होवा अंधा किन ना परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई रण में तेग बगाई, ओनी तुपकतान चलाई ओनी हस चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह फाटी इतना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी पटियाणी ठकराणी, एक ना पेरन सिर खुर पाटे एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया तिन क्यों रहण में हानी, आपे करे कराए करता किसनो आख सुनाई है। दुख सुख तेरा पाना होवे किसथे जाई रुआई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै नानक लिखिया पाई है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला घर अठवां अष्टपदिया। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो चले अवन जारा रहाओ, नीत नीत कर बांधी है जे रहना होई पिंड पवे जियो चल सी।

कहो नानको सब दुख मिटे प्रभेटे परमानंद। आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा संता की जात एको अंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख बिसरै प्यारे सो क्यों तजना जाए। एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए। जो जन राते राम सिंह प्यारे अंत ना काहू जाए। हर जिनी चाख्या प्यारे तृप्त रहे गाए। अंचल गहया साधका नानक पैव सागर पार पराए। जन्म मरण दुख कटिया प्यारे जा पेटे हर राय। सुंदर सुगड़ सुजान प्र मेरा जीवन दर्श दिखाए। जो जी तुझते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए। जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कहन न जाए। साची प्रीत ना टुटई प्यारे जो जुग रही समाए। जो तुत पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सहि सुभाए। साबे तुम ही जानते प्यारे किस पे कहो सुनाए।

करावे सो करी प्यारे, अवर किश कर न जाए। दिन रहण सब सुहावने प्यारे, जे जपिए हर नाओ साची साच साई कार कमावनी प्यारे। तुरमस्तक लेख लिखाए एको आप वर्तदा प्यारे, कट कर रहा समाए। संसार कूप ते उधर लै प्यारे, नानक हर शरण आए। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ससै सोए सिरठ जिन साजी, सबना सहव एक भया। सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल पया। मन काहे पूले मूड मना, जब लेखा देवै बीरा तो पड़िया रहाओ। ईवड़ी आदि पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई। इना अखरा मैं जो गुरमुख बूझै, तेसर लेख न होई। ऊड़ै उपमा ता की कीजै, जा कांत न पाया। सेवा करै सही फल पावै, जिनी सच कमाया। गंगे ज्ञान बुझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्व जिया मैं एको जाने, ताहो मैं कह न कोई। कक्के केस पुंडर जब हुए,

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञान ता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु प्रदेशत आयो, आवे ओढ़धारी प्रमरारी सर्व सुख हरनायो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुइते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन दाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जय होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरन। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकी शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत वखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय आ पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम हो बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो ते संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकने लहया। जल थल महियर पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत कर मलट पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद अंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत शंत। पिनी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना, मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै अंदनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ बिसर नाही एक खेनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया मन आनंद भया, प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखैगामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे प्राण मंत्र सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ ते आई संयोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨਤਾ ਅਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤ ਕੂੜ ਲਵਾਇਆ।

माल जोबन छोड़ वैसी रहो पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया। नह जाए किरत मिटाया, फाथो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायण। सुखो दुख पए नित पाप कमायण, पापा कमाने छड़े नाहीं, लै चले कत गलावया।

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नू कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हौम च आया हौम च गया, हौम जमया हौम च मुआ, हौम दिता हौम च लया, हौम च खटिया हौम च गया। हौम विच सत्यार कूड़ियार, हौम च पापुन विचार, हौम विच नरक सुरग अवतार। हौम विच हसै हौम विच रोवै, हौम विच भरी है हौम विच धोवै, हौम विच जाति जन सीख होवै। हौम विच मूर्ख हौम विच सियाणा, मोख मूत की सार ना जाना। हौम विच माया हौम विच छाया, हौम मैं कर कर जन तो पाया। हौम मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महला दूजा। हौम मैं इहा जात है, हौम मैं कर्म कमाहे, हौम मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे। हौं मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए, हौं मैं एहो हुक्म है पया किरत फिर आहे। हौं मैं दीर्घ रोग है दारू पिय समाहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो साहित्य आया, उन्नी मंदै पैर न रखियो कर सुकिरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला नित देवै चढ़ै सवाया, वड्याई वड्डा पाया।

अंडज जेरज उत्पजा खाणी सेत जाहा सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हा। नानक जन तो पाए कह संभाले सब नाहा जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग। नानक सचे नाम बिनु क्या टिका क्या तग महला पहला लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास नानक लेखै एक गल होर हों मैं चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पेह किया देही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरै एनस कहरै मोन विगूता क्यों जागै गुरबिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वै किश थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाना है फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आसा देसे ते नह केवल हमे शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक करमा बाहरे दर ढो ना लैनी धाम दे कमूल ना बुझने अपना अण हुंदा आप गणाए दे हौं ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जित जै ध्याए दे। श्लोक महला पहला कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार कूड सोयना कूड रूपा कूड पहननहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूपया पार कूड मिया कूड बीबी खप होए खार कूड कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणा बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला सच ता पर जानिया जार दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए सच ता पर जानिया जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रेसिया ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध कै विच दे करता बीओ सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ कै बह रह करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड्डै तोए नानक वखाणै बेनती जिन सच पल्लै होए पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिलै ता मस्तक लाइयै कूड़ा लालच छड्डियै होए एक मन अलख त्याईऐ फलते वे हो पाईऐ जे वेही कार कमाईऐ जे होवै पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाईऐ मा थोड़ी सेव गवाईऐ। श्लोक महला पहला सच काल कूड वरतिया काल काल बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे कहोय ता उगवै रुती हूरत होए नानक पाहै बाहरा कोरै रंग ना सोए त
ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਸਰਮ ਭਾਉ ਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀ ਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ।

निर्जास। वस्तु अंदर वस समावै, दूजी होवै पास। साहिब सेती हुक्म ना चलै, कही बने अरदास। कूड़ कमाणै कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास।

नानक सेवक कांडी है, जे सेती खसम समाए पौड़ी, नानके अंत न जापनी, हर ताके पारा वार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया, एक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप, हों कैस्यों करी पुकार, नानक करना जिन किया।

दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तत न जाई रहाओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई इस मटकी मैं शब्द संजोई हर का बिलोवना मन का बिचारा गुर प्रसाद पावे अमृत धारा कहो कबीर नजर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा आसा बाती सूकी तेल निखूटा मंदल ना बाजै नट पै सूता बुझ गई अगन नानक से धुआं रव रहया एक यवर नहीं दुआ रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब भूल बिगारे अपना काज कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिनते नाही परम पद दूरे आसा सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राख स्थेते रा मैया हूं बारक तेरा काहे ना खंड से अवगन मेरा रहाओ जे अत क्रोप करे करताया ता पी चीत ना राख समाया चिंत पवन मन परयो हमारा नाम बिना कैसे उत्तर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा आज हमारी गोमती तीर जहां बसे पीतंबर पीर वाहो वाहो क्या खूब गावता है हर का नाम मेरे मन पावता है रहाओ नारद सारद करै खवासी पास बैठी बीबी कबला दासी कंठे माला जेवा राम सहंस नाम ले ले करो सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दो समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मलनी पाती पाती जियो जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो पूली मालिनी है ओ सतगुर जागता है दे ओ रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर देओ तीन देव प्रतख तोरै करे किसकी से ओ पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गण नहारे खाओ पात पहत यर लापसी कर करा का सार भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कष्ट अपना कियो तीस बरस कष्ट देवन पूजा फिर पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हाथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुक्त फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर आसार बह जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुए लै ना गयो आई तरब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाट पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर कर।

बजावनहारो कहां गयो जनेहो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिगल पय संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता। थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते। मृतक पय दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे। आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महा।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे, अल्लाओ स्वादत जी संगार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखान अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

नित नित मेंढकन आवै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवै। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, ता सगली सैंतराई।

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र बिमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा

आसा सेख फरी जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीये रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जिने दी माओ आए सफल से पर्वत गार अपार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुमा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरी दै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अलह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़ियां मनोम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाई है घुम ना आई है झूठी दुनिया लग ना आप वंजाई है बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है जो गुर दसै वाट मुरीदा जोली है शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रहा जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दिया शे मां तुड़न दिया हिक खेनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जेरा लै कट अंतर पूजा होए पूजा कीचै नाम ते आई है बिन नावे पूजना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवे सो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रहे गोबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जाकी भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके त्रिपवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिरस निर्मल मन मुख रहण आधार सिद्ध समाध करे नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवी है मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रह जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀ ਓ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ, ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹ ਜਾਈ। ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਨਾ

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारै काम हम हर लाए, सो हम करै जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। अठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। धावत धावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो।

हर तन इशनान, हर तन ज्ञान, हर संग लाए ध्याना, हर तन तुल्हा, हर तन बेड़ी, हर हर तार प्राणा, हर तन मेरी चिंत विसारी, हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नमृत पाई, हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै, हलत पलत कह संगे लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया, एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा, जिस सिमरत सब किले विख नस, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सधी जापो, जा का अंत न पारो, पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ, तुम कहो हर हर सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनद अनंता, रंग तमासा पूर्ण आसा, कबह ना व्यापै चिंता, भवर तुम्हारा एहो मन होवो, हर चरणा हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंदे चात्रक मौला, गुजरी महला पंजवा, मता करे पछम कै ताई, पूर्व ही ले जात, खिन मै थापो थापनहारा, अपन हाथ मतात, स्यानप काहू कामनायात, जो अनरूपयो ठाकर मेरा, होए रही ओ बात रहाओ, देश कमावनो तन जोरन की, मनसा बीचे निकसे सास, लस्कर नेव खवास सब त्यागे, जंपरी उठ सिदास, होया नान मन हठ की दृढ़ता, आपस कौ जानात, जो अनिंद निंद कर छोड़ियो, सोई फिर खात, सहे सुभाए पय कृपाला, ते जनकी काटी फास, कहो नानक गुर पूरा भेटिया, प्रवान ग्रस्त उदास, गुजरी महला पंजवा, नाम निधान जिन जन जपयो, तिनके बंधन काटे, काम क्रोध माया बिख ममता, ए ब्याह ते हटे, हर जस साध संग मिल गायो, गुर प्रसाद पयो मन निर्मल, सर्व सुखा सुख पायो रहाओ, जो किश कियो सोई पल माने, ऐसी भगत कमानी, मित्र सत्र सब एक समाने, जो जुगत निशानी, पूर्ण पूर्ण रहो सर्ब थाई, आनकत हूं जाता, घट घट अंतर सर्ब निरंतर, रंग रवयो रंग राता, पय कृपाल दयाल गोपाला, ता निरपै कह कर आया, काल कलेश मिटे खन भीतर, नानक सह समाया, गुजरी महला पंजवा, जिस मानुख पै करो बेनती, सो अपने दुख भरिया, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, तिन पौ सागर तरिया, गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस घटै रहाओ, माया के संबंध सहन साक, कित ही काम न आया, हर का दास नीच कुल उच्चा, ते संगमन वाइंथ फल पाया, लाख कोट बिखिया के बिंजन, ता मैं त्रिशन ना बुझी, सिमरत नाम कोट उजियारा, बसता गोचर सूजी, फिरत फिरत तुमरे द्वार आया, पै पंजन हर राया, साध के चरण तूर जन बांछ, सुख नानक हो पाया, गुजरी महला पंजवा, पंच पदा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रथमे गर्भ माता कै वासा, ऊहा छोड़ तरन मैं आया, चित्र साल सुंदर बाग मंदर, संग न कछहू जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपूरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त फबी रहाओ,
इष्टमीत बंद पसुत भाई संग मंता रच हसया जब अंति अवसरिया बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोइना रूपा दामा पहाड़ी को ओह पहाड़ा मिलया होर सगल पयो बेराना हैवर गैवर रथ संबाहे गहो कर कीने मेरे जब ते होई लामी ताई चले नाही एक पैरे नाम तानो नाम सुख राजा नाम कुटम सहाई नाम संपत गुरु नानक कौ दी ओह मरै ना आवै जाई गुजरी महला पंजवां ते पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिनसे सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया बिनसना आवै जाई हर जप माया बंधन टूटे पहे कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ आठ पहर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हर सोग दोह माहे निराला करने हर पिछाता जिसका साथ इन्हीं रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवां दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ठ को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो नाम देव त्रिलोचन कबीर दासरो मुक्त पयो चमयारो गुजरी महला पंजवां है नाही को बूझन हारो जाने कवन पता शिव बिरंच यार सगन मोहन जानो गहना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिया अवर अवर बिद बुचिया बकन कथन रहता रहाओ आपे भगता आप स्वामी अपन संगरता नानक को प्रभ पूर रहे हुए पेख्यो जतर कथा गुजरी महला पंजवां मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु ना आयो जह जह अवसर आए बनयो है तहां तहां हर त्यायो प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो करे प्रतपाल बार की न्याई जन को लाड लड़ायो रहाओ जप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो शरण परयो नानक ठाकर की अपैदान सुख पायो गुजरी महला पंजवां दिन रातियां रादो प्यारो निमख ना की जय ढीला संत सेवा कर भावनी लाई है त्याग मान हर ठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो ही रह कै संगे पेख मोहयो मन लीला रहाओ जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरै मनोह जंगीला मिलबे की महिमा वर्ण ना साकौ नानक परै परीला गुजरी महला पंजवां मन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ते तीसा तिन की हैरत कछ ना रही बलवंत ब्याप रही सब मही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साते भागी ओए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवां दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ
मिलवर नारी मंगल गाया ठाकर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंदपो तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चल पोरा। ठाकरो तुझ बिन आहे ना मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आहो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहा उहा तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्श पायो, बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम होत जावै, प्रभ सेती रंग लाई। मन को एह उपदेश दरड़ावै, सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कब हूं जाई राओ। करत करत अनक बहु पांति, नीकी ए ठहराई। मिल साधु हर जस गावै, नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा खिन मैं थापो थापनहारा, कीमत जाय ना करी। राजा रंक करै खिन पीतर, नीचे जो धरी। त्याई है अपनो सदा हरी, सो जन देसा ताका कहां करिए, जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर, मन सरन तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक, हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही। चरण कमल रिदमाए सुमाए, तै परमा देरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम सुमाराओ, तुम ही कौ प्रभ आही। नानक टेक पही करते की, होर आस बिडाणी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर, केस संग दास पगचारो, एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर, बिनो करो कर जोर। नाम जपै नानक दास तुमरो, उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए। साध संगत को जोहे ना सकै, मल मल धोवै पाए। अब मोहे आए परयो सरनाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रहे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर, रही कंठ उर जाए। जन नानक अंग किया प्रभ करतै, जां कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै, होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाईऐ। जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंद सेती कर जाइऐ। जहां ते काल न बिरथी जाइए, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा ध्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाइए। चरण कमल नानक रंग राते, हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जीअन को दाता, भगत परे भंडार। जाकी सेवा निफल ना होवत, खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जा को वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार। हुए सहाय जिस तू राखै, तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेसर, अपनी कृपा धार। मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करतै,

पंजवा आपना गुण सेव सदी रमह गुण गोबिंद सास सास आराध हर हर लह जाए मन की चिंद। मेरे मन जाप प्रभ का नाओ सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ। साध संग उधार एहो मानो आठ पहरे आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद। अटाला शेदा भेद स्वामी सरण ताकी आओ चरण कमल आराध हृदय एक सिम लिव लाओ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बख्श लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई संका टूट दुखा नेरा।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल। काम क्रोध लोमो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत। सर्ब बेद प्रमते पुकारे कते नाही छोट हर चरण सरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आराध श्री तर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड़ जम दूत फास रहाओ। सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड़े भाग लिव लागी कवल प्रगास पाए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै। चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ। उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर अंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्व ज्योत निरंजन।

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, सेवकर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सच पावे कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिन को कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरै, सा वेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुत पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहे सुख पावे, जिन को नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सके, जो बालक खीर आधारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन को कृपा तुम्हारी रहाओ, सनक सनंदन नारद मन सेवै। अंदर जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वर्त, एका ज्योत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मंगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी, गावे कथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुलतारी। मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवे, ओ मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी। एहो परपंच खेल किया, सब करता है हर करता है सब गल तारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एक अंकारी। रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस तारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी महला पंजवां कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिया, भूमन मैं भूमा। ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते। पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिया। दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिया। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिया। भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती। जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कहिए। आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा। वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा। शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए। गाना सको सिक्का, नामन मैं तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता। इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा। कर्मन सिर कर्मा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बुलावे त्यो बोले स्वामी। कुदरत कमन हमारी, साह संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवां कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਨਾਥ ਨਰ ਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ਪੈ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਣਨਿਧ ਸਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਿਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਰ ਜਗ ਪਵ ਸਿੰਧ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਿਨ ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਮਕਰੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਧਰਣੀ ਧਰ ਪਤ ਰਾਖ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਲਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਿਧ ਮੰਤ ਛੇਦ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਮੇਟ ਪੁਰਖਿਆਨੰਤ ਸਿਮਰ ਸਮਰੱਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਸਹਿ

पीवत अमृत नाम जानो नामे रहे अगाए। सलोक महला पंजवा, कोट बिगन तिस लागते।

भक्त कड़ी मोहत है विसरा नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीर वरियाम केने ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनके वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवा किलविख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कले साई उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवा नानक सतगुर भेटे।

पौड़ी सो सतगुर तन तानो जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यो जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने, जिता जन्मया पार आप पछाने, महिमा कही ना जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंद्या जियो तू, कमावद्या सुख पुंच, ते आए द्या तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोबिंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अरपिए। आया चित निहाल साहेब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किश तिसकै वस ना कोई बाहरा, सो भगता मन उठा सच सुमहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। सलोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार, राख ले हो प्रभु अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांद्या खांद्या मोह कठा, पैनंद्या सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

बन मैया अजहो ना पेट अगई है, जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बहई है, कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे।

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै तां से सजाई, किसहु पूजो दूजा नजर न आई। एकै पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरियै पाओ। जे ओह देओ तां ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला, मलै ना लाछै पार मलो। परम लियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश है कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरै थनो बिटारियो, फूल पवर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पा

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर शरणं हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्र

कित गली, हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर, ए चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली। नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे ते तराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरो दीवानी आवल बावल, तिस कारण हर ढोली है, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हरे अमृत पी झोली है, गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जा रहो सब ते नीच आत्म कर्मानो मन में असुखता रहो। गुण गावे ठाकर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो देवगंधारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्स तुम्हारा सुंदर ध्यान तादर रैनी जी प्रांते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा दीनानाथ प्राण पथ पूर्ण भव जल उदर नहारा आदि जुगाद भगत जन सेवक ताकी बिखया धारा तिन जन की धूर बांछ नित नानक।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूल है उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधे हो बोजो नी परमाई है टिकट ना पावे बिन सतसंगत किसी आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महा

आओ दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्राह्मण त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवगंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया पारे उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो रख नहारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछै अंति वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ एह

लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावां, तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावां। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए, एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लइए। राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए, अनक अनक भांत बहु पेखे प्रे रोम ना सम सर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए, कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचे, भ्रम आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछ रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्ट सो गच्छ, साध संत की सरणी परिय चरण रेन मन बंछ। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छ, आए पयो नानक गुरचरणी तो उतरी सगल दुराछ। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे, अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहू मद निरारे। रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो, दीन दयाल पय प्रभ अपने बहुत जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के, रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाय बिखे बंतरिया कुल समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो, नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ, कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार, मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा कर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी उचा मोहन सबते उचा, आना सब

मोल न मूलिय कत पाइय मन रुचा खोज असंखा अनक तपंथा बिन गुर नहीं पहुंचा। कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा। देव गंधारी महला पंजवा। मैं बहुविध पेख्यो दूजा नाही रीको। खंड दीप सब पितर रव्या पूरयो सब लो रहाओ। अगन अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवै सुन सो। चार या शर्म चार ब्रन्ना मुक्त पय सेव तो। गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुति गए सुख हो। कहो नानक भव सागर तरिया हर निध पाई सहजो।

का लाख उलाहने मोहे हर जब लगन है मिले राम। मिलन को करो अपाव किस हमारा न चले राम। चल चित बेत्या नित प्रे बेनो कवन विधि ना तीजी है। खान पान सिंगार बिरथे हर कंत बिन क्यों जीजी है। आसा प्यासी रहन दिन यार रह ना सकिया एक तले। नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले। सेज एक प्रयो संग दर्शना पाईए राम। अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम। निर्गुण निमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा निदे। प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नम निदे। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए। नानक पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम। इच्छपुनी मन सांत तप्त बुझाया राम। सफला सो दिन सरैणे सुहावी अंत मंगल रसकना। प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन कवन रसना गुणपना। प्रम लोभ मोह बेकार थाके मिल सखी मंगल गाया। नानक पयम पै संत जंपै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्मपुरे अंधन नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लगे तेरा पाणा राम। कर दया मया गोपाल गोबिंद कोय नाही तुझ बिना। समराथिया गाथिया पार पूर्ण जियो तन तन तुम मना। मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीचे जाना। बिनवंत नानक सरन तेरी रख ले ओ आवन जाना। साधे सरनी पाईए हर जियो गुण गाव है हर नीता राम। तूर भगतन की मंतन लगो हर जियो सब पद पुनीता राम। पथता पुनीता होहे तिन संग जिन बिदाता पाया। नाम राते जी दाते नित दे चढ़े सवाया। रिद सिद्ध नव निध हर जप जिनी आत्म जीता। बिनवंत नानक वडभाग पाईऐ साध साजन मीता। जिनी सच वणंजिया हर जियो

त्या एक जन एक मन राम कै रंग मात्या लग संत चरणी पड़े सरणी मंत ना ओ महा बिनवंत नानक जिन नाम पल्ल सही सचे सहा नानक सोई सिमरिय हर जियो जाकी कल तारी राम गुरमुख मनो न विसरै हर जियो करता पुरख मुरारी राम दुख रोग ना पौ ब्यापै जिनी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन सांत आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एको अंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रै निड़िए प्रे प्रेम लगा कर दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार किरपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाईऐ प्रभ ते आईऐ जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजियै अर्प तन तन एहो मना बड़ पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमै सरोवर पियो अमै सरोवरो पियो, हर हर नामा राम संत संग मिले, जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरै, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सदमना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवां शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम कोई ना बेली होए तेरा, सदा पछोता वहे गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने न पाप जुड़ते जाम्बा गौनिया केली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया। गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया, तपत थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पहिता पिया। बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंधकूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला, शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा, सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए, भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइए। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलिया बहुत कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवां शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दोख कमावने, अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोध्या पार करते मोहे नीच कछू ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक शरण समरथ स्वामी पैज रख मोरी। जा ते विछड़िया तिन आ मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण में प्रगट पए, सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया, नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो तरमीड़िया, मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चले, बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोभा हस्त कोर विकारी, बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे, जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम, बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई, आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताणे राम, हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हाँ हाँ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के त्या पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ़ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना आराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख पाई है, होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेख नजर निहाल। महला तीजा सिवत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए, सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है, अगै भुखा के खाए पौड़ी। सब तेरी तू सब सदा सब तो दियो पाया,

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाहे हो हर सब नाते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है, सहजे होए सो होए, गुरमत

का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार सदा आनंद, गावै गुण साचे अर्ध उर्द उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदर रहे सदा गुण गाए, विण कर मैं किने ना पायो, भौक मोए बिल लाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भिजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जै। आप निर्विरत आप निर्विरती, आपे कथ कथी जै, आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड तू, पाओ कर चल गवाए, गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए, मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावनी, सा खसम पाए थाए, नानक काम क्रोध किने ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मनमुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर पंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनों गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझै सरे। सलोक महला तीजा, सदगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटी है, हमै ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रह समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सदगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सदगुरु है, कलयुग बोइथ होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सदगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है, आप

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जै, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार, नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी। आपे चाट साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाने, आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आने, एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़े आई, से जन सच्ची दरगह जाने। श्लोक मर्दाना पहला। कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोह।

संध्या नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास भया आपे दास अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल न भुल कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भ्रम गया श्लोक महला पंजवां हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़ै खेह जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देहे महला पंजवां घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वर्तै स्वामी आप जपाए नाम आप दयाल हुए पौखंड नो आप करै सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सदही दरगै पाए मान जिसदी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चित ना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनिस जलत बिहाए जो तिस भावै सो थीऐ कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारे होए कै सब समाले हो साहिब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू यो लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक हथ है सुख है अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठार बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए श्लोक महला तीजा मानस परे आणिया मानस परे आए जित पीतै मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जित पीतै खसम विसरै।

नानक गरीब राखो हर मेरे। वढ़ंस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हौ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी, हौ क्यों कर पिर कौ मिलो इयाणी। जो पिर भावै सा सुहागण, साई पिर कौ मिलै सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हौ क्यों कर पिर पावां, तेरे अनेक प्यारे हौ पिर चित ना आवां। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण। नित सुहागण सदा

जल थल महियल रहया परपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वरदाता अंतर जामी। सब मै रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै।

रतन जवाहर हर मन कलाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी ऊठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा। वढ़ंस महला पंजवा, विसर नाही प्रभ दीन दयाला, तेरी शरण पूर्ण कृपाला रहाओ। जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै तां लागै हावा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब।

सच कमाई है, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है, लिखे बाजो सुरत नाहीं बोल बोल गवाई है, जिथे जाए बहिया भला कहिए, सुरत शब्द लिखाई है, काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है, ता मैं कहया कहण जत जय कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा दुख डेरा टाहया, सुख मन में आए वसया जामते फरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया, ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना, जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, साबियो पाई ने आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे, किश पुन दान अनेक कर।

करहो दया तेरा नाम लखाना सब यो पाई है आप आपे सर्वे समाना सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एक भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम खाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम ना एक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावै राज तेरा कबो ना जावै राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावै चाकर ता तेरा सोए होवै जोए सह समावै दुश्मन ता दुख ना लगै मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करे स्वामी तेरे द्वारे जपै ता साचा।

तरला जवानी आप पानी इच मन की पूरी है। सारंग ज्यों पग तरै ठिम ठिम आप संदूर है। श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी बिरवंत नानक दास हरका तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वड़ांस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अपने पिर कै रंग रती मुइये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रहीये मुइये। पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रिचाया। आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया। सात हन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सातन मिल लई पिर आपे साचे साहे सवारी। निर्गुण मंतड़िए पिर देख अधूरे राम गुरमुख जिनी रावया मुइये। पिर रव रया पर पूरे राम पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे जुजुए को जाता। तन बाली भोली पिर सहज रावै मिलिया करम विधाता। जिन हर चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही परपूरे नानक कामण सा पिर भावै शब्दे रह हदूरे। सुहागणी जाए पुछो मुइये जिन्नी विचों आप गवाया। पिर का हुक्म ना पायो मुइये जिन्नी विचों आप ना गवाया। जिन्नी आप गवाया तिन्नी पिर पाया रंग स्यों रलिया माणे। सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाणे। कामण वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया। नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया। हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावै सदा मुइये निकर वासा पाए। निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी। पिर रलिया ला जुबन बाला अंदन कंत सवारी। हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए। नानक कामण हर रंग राती जा चलै सतगुर पाए। वढांस महला तीजा। गुरमुख सब वा पार पला जैसे जे की जय राम। अंदन नाम वखाणिए लाह हर रस पी जय राम। लाह हर रस लीजे हर रावी जय अंदन नाम वखाण। गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप पछाण। गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय।

हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम। लाहा परथाए हर मन वसाए, तन खेती वापारा, हर नाम ते आए मन वसाए, बूझै गुर बिचारा। मनमुख खेती वणज कर थाके, तृष्णा भुख न जाए, नानक नाम बीज मन अंतर, सच्चा सब सवाए। हर वापार से जन लागे, जिन्ना मस्तक मणि वट भागो राम। गुरमती मन निज कर वसिया, सच्चा शब्द बैरागो राम। मुख मस्तक पागो सच बैरागो, साच रते विचारी। नाम बिना सब जग बोराना, शब्दे हमे मारी, साचे शब्द लाग मत उपजै। गुरमुख नाम सुहागो, नानक शब्द मिलै पौ पंजन, हर रावै मस्तक भागो। खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मे मन वढाई राम। गुरमति हुक्म बुझियै, हुक्मे मिल मिलाई राम। हुक्म मिलाई सहज समाई, गुर का शब्द अपारा, सच्ची वड्याई गुरते पाई, सच सवरण हारा। पौ पंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई, कहो नानक नाम निरंजन, अगम्या गोचर हुक्मे रहा समाई। वढांस महला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो, अपने घर तू सुख वसै, पोहे ना सकै जम काल जियो। काल जाल जम जोहे ना सकै, सच शब्द लिवलाए सदा, सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजे पाए परम विगुति, मनमुख जोही जम काल, कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल। मन मेरे आए अंतर तेरा निदान है, बाहर वस्त ना पाल, जो पावै सो पुंच तू। गुरमुख नदर निहाल, गुरमुख नदर निहाल, मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे व्यापारा सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मन मुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हाउ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवने अपना से जनवड़ पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेह चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिया सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ बन जी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नामे पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख न होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखियां नु ते सच्चा कह दरबारा राम खोटे दरगह सुटियां नु उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुखटे संसारा खोटे खरे परखिया नो ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिए होर करना छूना जाई राम जित पावे ते तलाए सी जो तिस दी वड्याई राम जो तिस दी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अत मोलिया फारा सचवा पारा सचवा पार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वा पारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजै नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पै करै पुकारा राम माया मोह अंतर मन लागै माया

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, वड़हंस महला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता, सुन गुरमुख नाम। साबिन से हो मैं पापा राम, जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी, सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पै शरीरा। अंदन सह समाध हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम, मेरे मन पाया। हर तारो कृपा लेहो उबारे राम। हम पापी

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगै गुर खेवट शब्द दराए आन दिन हर रंग हर गुण गावै हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे हे रामो पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जन आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करतै हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुमिन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक बखाण नाम जाण हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माण रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

है, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवानो, सूर्य से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यो जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेख साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेख आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लाखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू, सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुध सिरजनी मेदनी, तुध सिरजी मेदनी, दुख सुख देवन हारो, नारी पुरख सिरजिया, बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया, देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया, सच नवेण नहारो, आवागमन सिरजिया, तू थिर करण हारो, जमन मरना आए गया, बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया, बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदया, अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तिन्ना जानिया, हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया, विछड़िया मेलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया, हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी, तोड़न हेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै, हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मरमाइए, महल रुनी दरबारे, रवो कंत महलिहो, सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया, कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया, पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानी है, फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठ मुठी संसारे, हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया, फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कार कार कंत महेलिया, रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना, हौरे सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया, सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो, सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी, सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है, कटकट शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो, दूर ना जानो, जिन एह रचना राची, नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणो, जिन जग थाप बताया जालो, सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना, अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया, दुख सुख पुरब विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया, सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांदी, कर हुक्म छड़ावन हारो, आज कल कर दिया काल ब्याप, दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया, ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਬਾ ਰੋਵੈ ਰਵੈ ਸੋ ਜਾਣੀਐ ਮਿਲ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾ ਰੋਵੈ ਮਾਇਆ ਮੁੱਠੜੀ ਤੰਦੜਾ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਵਾ ਤੰਦਾ ਰੋਵੈ ਮੈਲ ਨਾ ਧੋਵੈ ਸੁਪਨੰਤ ਸੰਸਾਰੋ ਜਿਉਂ ਬਾਜੀਗਰ ਪਰਮੈ ਪੂਲੈ ਝੂਠ ਮੁੱਠੀ ਅੰਕਾਰੋ ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਭਾਵਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਠ ਚੱਲਣਾ ਇਹੋ ਜਗ ਝੂਠ ਪਸਾਰੋ ਵਾ ਸੱਚਾ ਕਰ ਸੱਚੜੈ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਚਿਆਰੋ ਵਾ ਕੂੜ ਲੱਭ ਜਾਂ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਸੀ ਅੱਗੇ ਲਹਿ ਨਾ ਠਾਓ ਅੰਤਰ ਆਓ ਨਾ ਬੈਸੋ ਕਹੀਐ ਜਿਉ ਸੁਣੈ ਕਰ ਕਾਓ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੱਡਾ ਵੇਛੋੜਾ ਬਿਨਸੈ ਜਗ ਸਵਾਏ ਲੱਭ ਤੰਦੈ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲ ਖੜਾਰੂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਆਵੋ ਭਾਈ ਹੋ ਗੱਲ ਮਿਲੈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੱਚੜਾ ਮੇਲ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀਆਂ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ।

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरे ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिन अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड मुठी कूड़ आरे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप्यो पाए ओनो।

जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सातन मिले मिलाई पिर अंतर सदा समाले, एक रोवे पर विशुनिया अंधी ना जाने पिर है नाले। वढ़ांस महला तीजा। रोवे प्रै विशुनिया मैं पर सचड़ा है सदा नाले, जिनी चलन सही जाने सतगुर सेवै नाम समाले। सदा नाम समाले सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया सबदे काल मार साची और तार, फिर आवन जान ना होया। सच्चा साहेब सच्ची नाई वेखे नजर निहाले, रोवे पिरो विशुनिया मैं पिर सचड़ा है सदा नाले। प्रभ मेरा साहब शब्द ऊंचा है के मिला प्रीतम प्यारे, सतगुर मिली ता सहज मिली पिर राखिया उर तारे। सदा उर तारे नेहो नाल प्यारे, सतगुर ते पिर दिसै माया मोह का कच्चा चोला, तित पैदै पग खिसै पिर रंग नहीं पिर रंग राता सो सच्चा चोला, तित पैदै तिखा निवारे। प्रभ मेरा साहेब शब्द ऊंचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे, मैं प्रभ सच पछाणिया होर पुली अवगण यारे। मैं सदा रावे पिर अपना सचड़ै शब्द।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत्यो पाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यारो।

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कौ बा प्यारा, भाई कौ अत भाई। हुक्म भया बाहर घर छोड़िया, खिरमै पई पराई। नाम दान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार। जिन साची बूझ बुझाई रहाओ, जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदिया। जन स्यों वाद रिचाई, माया मगन अहनस मग जो है। नाम ना लेवै मरै बिख खाई, गंदन वैन रता हितकारी। सबदै सुरत ना आई, रंग ना राता रस नहीं बेदया। मनमुख पत गवाई, साध सवा मैं सहज ना चाखिया। जेबा रस नहीं राई, मन तन तन अपना कर जानिया। दर की खबर ना पाई, अखी मीट चलिया अंधियारा। घर दर दिसै ना पाई, जमदर बाधा ठौर ना पावै। अपना किया कमाई, नदर करे ता अखी वेखा। कहना कथ न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही। अमृत हृदय वसाई, निरपौ निरंकार निरवैर। पूर्ण जो समाई, नानक गुरविन परम ना भागै। सच नाम वडियाई, सोरठ महला पहला। दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंड चौबारा। सगल पवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। मेरे साहेबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महियल पर पुर लीना। आपे सर्ब समाणा रहाओ, जह जह देखा तै जो तुम्हारी। तेरा रूप कनेहा, एकत रूप फिर प्रसन्ना। कोई न किसी ही जेहा, अंडज जेरज उत्पुज सेतज। तेरे कीते जनता, एक पुरु मैं तेरा देखिया। तू सबना माहे रवंता, तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख किश दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहेबा। डुबदा पत्थर लीजै, सोरठ महला पहला। हाँ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। अमृत चाख परम रसराते, ठाकर शरण तुम्हारी। करता तू मैं मान निमाने, मान महत नाम तन पल्ले। साचा शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम ऊरे ओछे। तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते। अहनस प्रभाते, हर रसना जाप मन रे। तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे। अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे। अवर ना दिसे किसा लाही, तिसे शरीक ना कोई। प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। सोरठ महला पहला, अलाख्या पारिया गाम्या गोचर। ना तिसकाल ना करमा, जातया जाता जोनी संपो। ना तिस पाओ ना परमा, साचे सचियार विटों कुर्बान। ना तिस रूप वर नहीं रेखिया, साचा शब्द निशान रहाओ। ना तिस मात पिता सुध बंधप, ना तिस कामना नारी। अकुल निरंजन अपर अपंप्र, सगली जो तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योत सबाई। बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निरपै ताड़ी लाई। जन तो पाए काल सिर जनता, वसगत जुगत सबाई। सतगुर से पदार्थ पावै, छूटै शब्द कमाई। सोचे पांडै ऐसा समावै, विरला सूचे चारी। तंतै को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। सोरठ महला पहला, ज्यो मीना बिन पानी है, त्यों सागत मरै प्यास। त्यों हर बिन मरिया रे मना, जो बिरथा जावै सास। मन रे राम नाम जस ले, बिन गुर एहो रस क्यों लहो। गुर मिलै हर दे रहाओ, संत जना मिल संगति। गुरमुख तीर्थ होए, आठसठ तीर्थ मजना गुरदर्श प्राप्त होए। ज्यों जोगी जत बाहरा, तप नाही सत संतोख।
त्यो नामै बिन देहुरी जम मारै अंतर दोख सागत प्रेम न पाई है हर पाईए सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत समाए सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पे खारी जियो मैं क्या मांगा किश थिर न रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो घट घट रव रया बनवारी जल थल महियल गुप्तो वरतै गुरसबदी देख निहारी जियो रहाओ मर्त पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्मा जोनी हैपी होनी घट पीतर देख मुरारी जियो जन्म मरण को एहो जग बपड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुर मिले ता गुरमत पाई है साकत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे बहुड़ ना गर्व मजारी जियो नानक ज्ञान रतन प्रगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोरठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोडो वेस पेख चतराई दुबदा एहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै कारे अमृत कट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा को धावो कर अवगुण पछताही जियो सर अवसर की सार न जाने फिर कीच बुढ़ाही जियो अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नामो काही जियो निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो सच गुरबचनी फल पाही जियो ज्यो पावै त्यो राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोरठ महला पहला पंच पदे अपना घर मुस्त राख ना सके की पर कर जोहन लागा घर दर राखे जे रस चाखे जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कवन मत लागा नाम विसार अनरस लोबाने फिर पछताहे अभागा रहाओ आवत कहो हरख जात कहो रोवै एहो दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग भोगावै गुरमुख सो अनरागा हर रसी उपरे अवर क्या कहिए जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहत जिन एहो रस खोया जा साकत दुरमत लागा मन का जियो पवन पत देही देही मैं देव समागा जे तू देहे ता हर रस गाई मन तृप्तै हर लिव लागा साध संगत मैं हर रस पाईए गुर मिले जम पौ भागा नानक राम नाम जप गुरमुख हर पाए मस्तक भागा सोरठ महला पहला सर्ब जिया सर लेख तो राहू बिन लेखै नहीं कोई जियो आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जपो सुख होई अहनिस गुर कै बचन सरेव हरदाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो कर अपने गुर मिले अहमत होई जियो देख दृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरे सुख होई जियो पीवो अपियो परम सुख पाईए निजकर वासा होई जियो जन्म मरण

बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए तोह कुटै, मनमुख कर्म करै पाई पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या पाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार आया सो प्रमाण है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाईऐ भाई, गुर सबदी मेलाए, सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई, पूछो ज्ञानियां जाए। मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए, हर जियो तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै पाई, नाए विसरिया मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, पवजल पार उतार, जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया, मरजन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै हर रा साधना आया संध्या तर्पण करै गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सोवट भागी जिसनो वाह मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए एहो जग अंदा सब अंध कमावै बिन गुर मग ना पाए नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै करै अंदर सच पाए सोरठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे।

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किरबिख कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दातै दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजै। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा सबदे हम मैं खोई। सोरठ महला।

निरपौ निरंकार पव खंडन सब सुख नव निर्देशी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब के तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदात है निखुट न कभी जाई अनंद भया सुख सह सुमाने सदगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चूकी कान जमाणी जिन कहो किरपाल होवा प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करै प्रभ तेरी तू सर्ब जियां दयाला सब किश कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा जो पिता पूत किरपाला सोरठ महला पंजवा कर पहला चौतुके गुरु गोविंद सलाहिया पाई मन तन हिरदै तार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए शार साध संगत कौ वारिया पाई जिन एक अंकार आधार सोई साचा राधना पाई जिसते सब किश होए गुरपूरै जान आया पाई तिस बिने अवर ना कोए रहाओ नाम होने पच मोए पाई गणत ना जाए गणी विण सच सोच ना पाईए पाई साचा अगम तनी आवन जान न चुकई पाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा पाई दे नाम एक कणी सिमरत शास्त्र सोधिया पाई विण सतगुर परम ना जाए अनक कर्म कर थाकिया पाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सोधिया पाई मिन सतगुर नाही जाए वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम ते आए सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साचे सोए नदर करे जिसे अपनी पाई तिस प्राप्त होए कोट मदे जन पाईए पाई विरला कोई कोए नानक रता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होए सोरठ महला पंजवां दो तुके जाओ लाओ पाओ अपाओ एहो माने ताओ लाओ मिलन दूराई आने अपना करत बिचारा ताओ लो बीच बिखाई माधवे ऐसी देह बुझाई सेवो साध गहो ओठ चरना न बिसरे मोहत छसाई रहाओ अरे मन मुगद्या चेत चंचल चेत तुम ऐसी हृदय ना आई प्राण पत त्याग अंतू रचिया उर्जो संग बैराई सोग ना व्यापै आप ना थापै साध संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउ जानो जैसे पवन चुलाई कोट परादा शादे ओहे मनो कहना कछु ना जाई जन नानक दीन सरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई सोरठ महला पंजवा पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता माया संबंधे ही अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असने ही रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाए गो तूम बादरो एक पाजो राम सने ही रहाओ तीन संगियां कर देही कीनी जल कूकर पस में ही होए आमरो ग्रह मैं बैठा करण कारण बिसरोही अनक पांत कर मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत पापरे फिर पाछे पछतोही जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस ध्यावो दिन रह नेही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही सोरठ महला पंजवा गुर पूरा पेट्यो वड भागी मने भया परगासा कोय ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਨਿਰਪਉ ਪਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪੀ ਹੋ ਬਨਹਾਰਾ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੰਜੋ

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरे बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरा सूजस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक।

सोरठ महला पंजवा तन संतन का, तन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब थिया। संतन बेनो यवर ना दाता बिया जो जो शरण पर साधु की सो पार गरामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी

जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जेह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरने जेह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय पय मगन चरनारा सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमलन स्यो अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर दे सारा हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम रखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवां कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर।

कीते कहो मेरे सम्मान करनहार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली दान देह प्रभ पाने। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे, रूडो गूडो गहर गंभीर ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया संतन कह प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवा जेती

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पानै अंतर्विद जानै ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकी कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो का टायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाएं

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अविनाशी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार सोरठ महला पंजवा। गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई कीनी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जब सदा निहाल रहाओ। अंतर बार थान थनंतर जतकत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जेवड़ियावर ना कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारिया। राखन हारै राख्यो बारक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की शरण आई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाओ। घर मैं सुख बाहर फुन सुखा प्रभ अपने पहे दयाला नानक बिघन ना लागे को मेरा प्रभ होवा कृपाला। सोरठ महला पंजवा साधु संग भया मन उद्दम नाम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमरिया नंता सागर तरिया पाई। हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज तन उपजी रोगा कान मिटाई रहाओ। क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन न जाई नानक भगत पय अविनाशी अपना प्रभया सहाई। सोरठ महला पंजवा गए कलेस रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा तारी आठ पहरे आरा दो स्वामी पूर्ण काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास राख लै हो भाई मेरे कहो प्रभ आगे अरदास रहाओ। जो मांगो सोई सोई पावाओ अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरपुरा भेटियो मिट्यो सगलियां देसा। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरपुरा सुखदाता करण कारण समर्थ स्वामी पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला जय जयकार भय जग पीतर होवा पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंग मान। साचा साहेब सद मेहरवान बंद पाया मेरे सदगुर पूरै हुई सर्ब कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सत कुरबान। सोरठ महला पंजवा दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी अपना बिरद समारिया। होई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावो मन तन देह सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरण सतगुर मेरा मोहे तिसका परवासा बख्श लय सब सच्चा साहेब सुन नानक की अरदासा।
ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਉਬਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤਾਪੋ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਉ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਪਾਖਿਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤਿਤ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਭਾਈ ਠੰਡ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਜਮੈ ਕੀਓ ਹਟਤਾਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰਤਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ ਭਾਈ ਦੁਖ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਰਹਾਉ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਬਰੈ ਭਾਈ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਭਾਈ ਸੱਚੈ ਸੱਚੀ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ ਭਾਈ ਮੰਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ

तैं साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तैं अनहद शब्द या गाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर इशनाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकी कीमत कहन न जाई सिर साहा पातशाह गुर भेट तमन यो महा सगल प्राहित लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करै जयकारा नानक प्रभ मेरा साथे जन्म मरण पैलाथे सोरठ महला पंजवा गुरपूरै कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इसनान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर तिहाइय अन दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडपागी पाए कोट जन्म के किल बिखना से हर चरणी चितलाए उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जन पूरी कल राखी जी जंत सा पै पवित्रा सदगुर की सच साखी बिघन बिनासन सब दुख नासन सदगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पय सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पहे दयाला जप आनंद रहो।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु अवतराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी, परमेसर आप हो रखवाला, सांत सहज सुखन मैं उपजे, मन हो

मिल साधु दुर्मत होए पद तपनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो।

जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावै कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै हरियंत्र जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहण ना जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे का सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पा

नानक नाम ते आया आद पुरख प्रपाया। सोरठ महला पंजवां जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दय वसाया। सुख सागर गुर पाया ता सही सा सगल मिटाया। हर के नाम की वड्याई आठ पहर गुण गाई गुरपूरे ते पाई रहाओ। प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुरपूरे ते जानी। सोरठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया। सर्बनदान सुख पाया गुरे अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वड्याई। मन इच्छे फल पाया।

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पा दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावै, आठ पहरो हर का जस रमणा, बिखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपै आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिकै बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बगस अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज कहो क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवा, सुख सांद कर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवा, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय उर तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवा,
हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की वडियाई, ता की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम, जिसनों बख्श लह मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरण आई, मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कत हूं नाही। साचे साहेब स्यो मन मान्या, हर सर्व निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा, नाल नारायण मेरा, जमदूत ना आवै नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे, गुर पूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ पहरा, नानक प्रभ शरण आए, जन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा, सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकी सरनी पाई है। दर्शन पेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो पाई, नाम जपो नामो आरादो, गुरपूरे की सरनाई रहाओ। तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूर्ण पाई, नानकी बेनंती प्रभ जी, नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा, करण करावन हरे अंतर जामी, जन अपने की रखै, जय जयकार होत जग पीतर, शब्द गुरु रस चाखै।

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभु अपने पवनित पहारे उतारे संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल किरपाल किरपा निद पूर्ण खसम हमारे रहाओ आओ बैठ आदर सब थाई ऊन न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एको अंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वरगाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम पजल जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर पजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत तन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ अटल पयो त्रुजा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहा लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ता कै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौ तावत कह बिदरो कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुनो निमख ना हिये बसावै। पर धन पर धारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागयो दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरकाओ संग शाड़ सब भागे।

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिओ बैरागीए पाई दर कर साचिया पूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़े तेहे गुर बिन अलख न लखिए पाई जग बुढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई जय पावे तें दे बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए ब्रह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हरनाक समार पजाया गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी एह तेरी वडियाई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ भगता नु जम जोहे न सकै काल ना नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई अरिद सिद सब भगता चरनी लागी गुर कै सह सुबाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवई अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हृदय शब्द ना भेदियो हर नाम ना लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फीका या लाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विधाता हों मैं मार मन सामने समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवार नहारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मनमुख पौंक मोए बिल लाई आवे जावे ठौर ना पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर सरनाई जिन हर मन वसिया से दर सचे सचियारा ओना दी सोभा जुग जुग होई कोई न मिटन हारा नानक तिन कै सद बलिहारै जिन हर राखिया उर तारा सोरठ महला तीजा दो तुकी निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो वापे बख्श में लाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लय रलाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे
ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਪਏ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਨੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪਉ ਕਰਨੀ ਸਚਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਕੁਲਪੀ ਲਈ ਬਖਸਾਏ ਸਚ ਬਾਣੀ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

आओ गुर की कार कमावनी पाई, आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई, हर आप वसै मन आए, फिर का हुक्म ना जान पाई, सा कु लखनी कुनार, मन अठकार कमावनी पाई, विणना मैं कूड़ियार, से गावे जिन मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चे बैराग, आंदन राते गुण रवे पाई, निरपो गुर लिवलाग, सबना मार जीवालदा पाई, सो सेवो दिन रात, सो क्यों मनो विसारी है पाई, जिसकी वड्डी है दात, मनमुख मैली डुमनी पाई, दरगे नाही थाओ, गुरमुख होवे ता गुण रवे पाई, मिल प्रीतम साज समाओ, एत जन्म हर ना चेतो पाई, क्या मोह देसी जाए, किड़ी पवंदी मोहायोन पाई, बिख्या नो लोभाए, नाम समालै सुख वसै पाई, सदा सुख सांस शरीर, नानक नाम समाल तू पाई, अपरंपर गुणी गहीर, सोरठ महला पंजवां, कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सब जग जिनै उपाया पाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई, दे कर अपनी वथ, किन कहिया क्यों देखिए पाई, करता एक या कथ, गुरु गोविंद सलाहिए पाई, जिस ते जापै तथ, मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दानो दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाओ, जा कै कर सब किश है पाई, नौनिद परे पंडार, तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा गम अपार, जी जंत प्रतपालदा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा भेटिए पाई, शब्द मिलावनहार, सच्चे चरण सिरेविय पाई, प्रंप हो वै नास, मिल संत सभा मन मांजिय पाई, हर कै नाम निवास, मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवै प्रगास, गुर बचनी सुखी उपजै पाई, सब फल सतगुर पास, मेरा तेरा छोड़िए पाई, होई है सब की तूर, कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखै सुने हजूर, जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर, करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला भरपूर।

जिस प्रतीत न आवे पाई सो जीअड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहेब पाई हों तिसकै बल जाओ। ओह निर्गुणी आरे पालदा पाई दे निथा वे थाओ। रिजक संबाहे सास सास पाई गूढ़ा जाका नाओ। जिस गुरसाचा पेटिया पाई पूरा तिस करवाओ। तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई सर्व कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै पाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई पौ जल दुख संसार। कर कृपा नजर निहालिया पाई कीतो ने अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार। नानक ते शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तह अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया। जिसनो कीतो कर्म आप प्यारे तिस पूरा गुरु मिलाया। सो आरा दे सास सास प्यारे राम नाम लिवलाया। मन तन तेरी

मिठा करके खाया प्यारे तिन तन कीता रोग कौड़ा होए प्रतिष्ठिया प्यारे तिस्ते उपजिया सोग।

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस सियाण पा प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कून न चली नाल सतगुरु जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध।

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरे ना एक काजा भज्यो ना रघुपत राजा रहाओ। बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया। भगत नार दी हृदय न आई काश पूछ तन दीना। राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परे काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिरया और ना देखा।

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमा से आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवाया केला।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाउ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तोलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी, भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे, सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही, नेरे नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी देहो, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शिवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतु था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आ प्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाज।

तव हम भय है चकोरा। माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यों तोर कवन स्यों जो रह रहाओ। जो तुम दीवरा तव हम बाती, जो तुम तीर्थ तव हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोरे अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और ना देवा। तुमरे भजन कटै जम फासा, भगत हेत गावै रवदासा। जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसै बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होए गो

सेवा करै, जिसका जियो तिस आज्ञा धरै, साहिब पावै सो प्रवान, सो सेवक दरगै पावै मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहेब कृपा करै, सो सेवक जमते कैसा डरै। भणत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार, तांको पावे मुख द्वार, जप तप सब एहो शब्द है सार। तनासरी महला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए,

पूरे गुरु की साची बाणी, सुख मने अंतर सहि समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमती घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जल अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोय, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौ मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, तिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तनासरी महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाओ, एहो हर रंगूड़ा तन पिर होए, संत सिंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोय ना पाए, मुलों पुला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, सच नाम वड्याई पाए, आपे करता जो जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साजर ते प्रभ्या मिलाए, तनासरी महला तीजा तीजा, जग मैला मैलो होए जाए, आवै जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब पर जब गोई, मनमुख चोटा खाए, अपनी पद खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पति उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दरड़ाई, भगत करे जन्म डियाई पाए, साच रते सुख सहि समाए, साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछाण, साची रास साचा वापार, सो तन पुरख जिस नाम प्यार, तिन प्रभ साचा एक सच लाए, उत्तम बाणी शब्द सुनाए, प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार, तनासरी महला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो सा संभाल्यो दुख जाए, साचै शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा यगन बुझाए, अंतर सांत सहे सुख पाए, गुर कै पाणै चलै ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझै ना जाणै बाणी, मन मुख अंदे दुख विहानी, सतगुर भेटे ता सुख पाए, हम मैं विचों ठाक रहाए, किसनों कहिया दाता एक सोए, कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा, तनासरी महला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुवे कैसे हर पाए, एहो मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसन बख्से हर दे वड्याई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करनी कार कमावै, तां इस मन की सोजी पावै, मन मैं मत मैंगल मिकदारा,
गुर अंकस मार जीवा लनहारा। मन असाधु साध जन कोई, अचर चर ता निर्मल होई। गुरमुखे हो मन लिया सवार, हमें विचों तजै विकार। जो तुर रखिया नो मेल मिलाए, कदे ना विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। तना श्री महला तीजा, काचा तन संचै मूर्ख गावार। मनमुख पूले अंध गवार, बिखिया कै तानु सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमति पाए। काचा तन फुन आवै जाए रहाओ, मनमुख भूले समरै गवार। पवजल डूबे ना उरवार ना पार, सतगुर पेटे पूरे भाग। साचरते अहिंस बैराग, चहो जुग में अमृत साची बाणी। पूरे पाग हर नाम समाणी, सिद्ध साधक तरसै सब लोए। पूरे भाग प्राप्त होए, सबके साचा साचा है सोए। उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए, सच साचा सच आप दृढ़ाए। नानक आपे वेखै आपे सच लाए। तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही ना जाए। से जन तन जिन एक नाम लिवलाए। गुरमत साची साचा विचार, आपे बक्से दे विचार। हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूर्ख मूर्ख मन माहे, हमें वे सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हमें जाए, आपे बक्से ले मिलाए। बिखिया का तन बहुत अभमान, हंकार डूबे ना पावे मान। आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत साला ही सह सोई। आपे साजे करता सोए, तिस बिंदु जाय अवर ना कोए। जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा, कर चौथा एको अंकार। सतगुर प्रसाद हम पीख कपे खारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन कहो, सदा रहो रंग राता। हम बलिहारे जाऊं साचे तेरे नाम विटाऊं। करण कारण सबना का एको, अवर ना दूजा कोई रहाओ। बहुते फेर पए किरपन कहो, अब किस कृपा कीजै। हो दयाल दर्शन देहो अपना, आपी ऐसी बस करी जै। पंडित नानक परम पट खूले, गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है पीतर, सतगुर स्यो मन मानिया। तनासरी महला चौथा, कर पहला चौपदे एको अंकार। सतगुर प्रसाद जो हर सेवै संत भगत, तिनके सब पाप निवारी। हामी ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत। कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ, जन्म जन्म के लागे विख मोरचा। लग संगत साध सवारी, जो कंचर बै संतर तायो, मल काटी करते उतारी।

सहा सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जा गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वासकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करे सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मन एक स्यो मोह कीना मर न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरनी लाए साध संग चिंता

हमें रोग मिटे कृपा ते जमते पे विवका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी। कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नेकी खटानी। जी की एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मनतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्तानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मह किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रपै बिनहर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन कर

कामवंत कामी बहुनारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एहो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरना साको उसता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरा ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बिखै ठगौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे विश्राम निद पाई। तुम करो

खोजै सब ता कहो बिख मना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम जाप ताप परमन बसदा कर उर्द ताप लै गैन एह बिदन है पतियानो ठाकर जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल हर जस तिन पायो जिस कर पैन साध संग रंग प्रपेटे नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा बंधन ते छुटकावै प्रभु मिलावै हर हर नाम सुनावै अस्त्र करे निचल एह मनुआ बहुण ना कतहू तावै। है कोई ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा इन स्यो प्रीत न लागै संतै संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागै। गुण निदान दयाल पुरख प्रभु सर्व सुख दयाला मांगै दान नाम तेरो नानक ज्यों माता बाल गोपाला। तनासरी महल

जन की तुर देहु कृपा निध, नानक कह सुख एही तना श्री महला पंजवा। जतन करे मान खुडह कावे, ओह अंतर जामी जाने। पाप करे कर मुकर पावे, पेख करे निर्बन। जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताकै उत ते उत पेखै, आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग टुटै नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा, नाम गुर दी होए अपने, जाके मस्त करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब, नामो गत नामो पत जन की। माने जो जो हो ग्रहाओ, नाम तानो जिस जन के पाले, से ही पूरा सहा। नाम व्यवहारा नानक आधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा, नेत्र पुनीत पय दर्स पेखे, माथे परोर वाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो रखन हार दयाल, सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ। हो प्रभु कृपाल रहाओ, महा आनंद मंगल रूप तुमरे। बचन ने ऊपर साल, हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा, अपनी उकत खिलावै भोजन, अपनी उकत खिलावै सर्व सुख। भोग रस देवै मन ही नाल समावै, हमरे पिता गोपाल दयाल। जो राखै महतारी बारक कौ, तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक, सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले, नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ जिसका सा तिन ही रख लिया पूर्ण प्रभ की पाती मेल लियो आपे सुखदाता नानक हर

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगेओ। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकार कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे।

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवन जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइऐ रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घड़ पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पयावै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा। मन मिलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। आचारा विचार शरीर, आजुगा सहज मन तीर। पल पंकज मैं कोटो धारे, कर कृपा गुरमेल प्यारे। किस आगै प्रभ तुद सा लाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही। जो तुद पावै त्यो राखर जाए, नानक सहज पाए गुण गाए। तनासरी महला पंजवा, कर छेवा अष्टपदी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जो जो जूनी आयो, तेह तेह उर जायो। मानस जन्म संजोग पाया, ता की है ओट साध। राखो दे कर हाथ, कर कृपा।

अन क्यों पाव करो माया को बचित धरो मेरी मेरी कर तो सद ही विहावै कोई ऐसो रे पेटै संत मेरी लाहै सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावै पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खेना धीरै मेरे करके पंचा।

मन कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सुनाना सगलिया शर्म कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेखै जिस भेटिए सफल मूर्त करै सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन अठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखैदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन ने सा तीर्थ मजना साचना लागै मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आ पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो साला हे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़े सुवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड़े आखी है हम मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवे बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी परपुर रहा सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिरसर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर भरम चुकाए अकथ कहाए सच मैं साज समाणा आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सरंदिया जियो एक साब दोरा वाद वधंदिया जियो दो राह चलाए हुक्म सवाए जन्म वा संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवार नहारा नानक साहेब सब संजापै साचा सिरजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो
ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਮ ਤਸਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਣੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਣੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹੰਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੋ ਆਥ ਕਿਉ ਦਰ ਜਾਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸਚ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸਚ ਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ ਦੀਨਾ ਨਾ ਦਿਆਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧਰੋ ਫੁਰਮਾਈ ਆ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਰ ਸਿੰਘ ਮੂਠੜੀਏ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈਆ ਜੀਓ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆਲਾ ਲੇਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਜੀਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਸੀ ਗੁਣੀਆ ਚਾਰ

हमरे मन तनो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा मालो गज गन का पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से भाई बारह जो जन छत्र चले था, देही गिरज न खाई सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो सत्र दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या भरमो ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा कर हला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो आतरंग रूडो मेरो रामैया, रहाओ ज्यो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला, ज्यो तरणी कौ कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले कहूं डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिए पुंडरक मना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा रहा।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लै लाहा, हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिले हरिओ महाराम, कर कीर्तो जस अगमाथा, खिन खिन राम नाम गावा, मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा, खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वासे आवै, मंतन हरे ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लैलाहा, दीन दयाल कृपा कर माधव,

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आपया वर्त है, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर समुद मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए।

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभ को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट उतसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई।

कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वडभाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत श्री महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महाजंजाला छुटके जमै डरा। आयो दुख हरण सरण करना पत गहयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा। अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत श्री महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई। सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ। दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई। एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई। तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप। अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप। अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप। हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक। काड लिहो नानक अपने कहो संसार पाव के कूप। जैत श्री महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर। चरण गहो बकों शुभ रसना दीजे प्राण्या कोर रहाओ। मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर। या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख पंजन चितवो तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर। जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है। कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ। अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे हैं। आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं। हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं। चरण कमल नानक आराधै तिस बिन आन ना के हैं। जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण। कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ। प्रेम ठकौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी। ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कवन हमारी। लाए लय लड़ दास जन अपने उधरे उधर नहारे। प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे। जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म परम सरणी। उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी। सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी। हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परणी। जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम। हर जन को अपदा

नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै। नानक हार पर्यो शरणागत अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ। जा को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबू नाए संभारा नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंदन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चातरक जवै तसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया मुंह कही ना जेहिया। यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा। तना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया हों तिस आग्या मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागण मुंह दस डिखा पिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा किस नी सी छंदा। यार वे तै रव्या लालन मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने। बहा पकड़ ठाकर हों किदी गुण अवगुण ना पिछाणे। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया पिर दयाल सद नवरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ कहन न जाया कथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गणो असंख अवगण मेरिया। असंख्य अवगण खते फेरे नित प्रत सद पूली है मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया। बिनवंत नानक दया तारो काट पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ। नानकी बेनंतिया मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ कां पह जाइय आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना मनह चिंदया पाई है। तजमान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है। बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक अरे मनता को त्याई है सब जा के हाथ राम नाम तन संची है नानक निभ है साथ। शंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान अंतर आप जलथल पूर सोए। जलथल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी। पज सरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए। बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए। सलोक
ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ੰਤ। ਆਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਬੁੱਝੀ ਤਬ ਤਿਆ ਗਾਨਿਆ, ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ। ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ, ਕਰਤੇ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ। ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ। ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ, ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵਹੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਪਰਮਾਏ ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ। ਜੋਬਨ ਗਇਆ ਬਤੀਤ ਜਰ ਮਲ ਬੈਠੀਆ, ਕਰ ਕੰਪੈ ਸਿਰ ਡੋਲ।

दयाल पुरख भगवान ने नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी। जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया, कोट अगा गए नाश हर एक ते आया। निर्मल पय शरीर जंतूरी नाया, मंतन पय संतोख पूर्ण प्रभ पाया। तरे कुटंब संग लोग कुल सवाया, सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूर्ण नारायण है, गुर दयाल समरथ गुर, गुर नानक पद तो उदाहरण है। पहो जल बिखम असगाहो गुर बोथ तारियम, नानक पूर करम सतगुर चरनी लग्या पौड़ी। धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे, गुर कृपाल जप पए ता अवगुण सब छपे। पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे, काट सिलक दुख माया कर लीने आप दसे। गुण गाए बेअंत रसना हर जसे, सलोक दृष्टंते को सुनियंते को वर्तनते को नर हर है। नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करै। हिक सेवी हिक समला हर इक सपै अरदास, नाम वखर तन संचया नानक सच्ची रास पौड़ी। प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो, सब किछ आपे आप दूजा कहां के हो। आप करो प्रभ दान आपे आप ले हो, आवन जाना हुक्म सब निश्चल तुद थे हो। नानक मंगे दान कर कृपा नाम दे हो, जय श्री बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ कछु ना जानो, मन माया कै हाथ बिकानो रहाओ। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलजो के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगारयो, पल पल हर जीते अंतर पारयो। जत देखो तत दुख की राशी, अजो ना पते आए निगम पै साखी। गोतम नार उमापत स्वामी, शीस धरन सहस पगगामी। इन दूतन खल बद कर मारियो, बडो निलाज अजू नहीं हारियो। कह रवदास कहां कैसे कीजै, बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। एको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्त वजूनी सह भंग गुरप्रसाद। राग टोडी महला चौथा कर पहला, हर बिनो रह न सकै मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर न पवजल फेरा रहा। मेरा हीर है लोच लगी प्रभ केरी, हर नैनो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दिरलाया, हर पादर हर प्रभ केरा। हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोविंद हर प्रभ केरा। हर हृदय मंतन मीठा लागा, मुख मस्तक भाग चंगेरा। लोभ विकार जिन्ना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा। ओए मन मुख मूड अज्ञानी कहियै, तिन मस्तक भाग मंदेरा। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा। जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुरमस्तक भाग लखेरा। टोडी महला पंजवा कर पहला, दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै। जाको पाक स्वामी रहाओ, ऊच समाना ठाकर तेरो। अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलो भगतन को, राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। निरपा होए रहे लिवेक, नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुवारी। ताको तोखा कहां ब्यापै, जाको ओढ़ तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। नवखंडन को राज कमावै, अंत चले गोहारी।
गुण निदान गुण तिन्ही गाए, जा कौ कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा, कर दूजा चौपदे को ओंकार सतगुर प्रसाद। तायो रे मंदर जिस तायो, माया मगन स्वाद लो मोहयो, तिन प्रभु आप भुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मुहत नाहि मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कसुंभ को, पर गृह जोहन जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ तावै बहु पाती, जो तेली बल्द परमायो। नाम दान इस नान ना कियो, एक निमख ना कीर्त गायो। नाना झूठ लाए मन तोखियो, नह बुझियो अपनायो। पारे उपकार ना कबहू किए, नहीं सतगुर सेवत आयो। पंच दूत रच संगत गोष्ट, मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर, भगत वच्छल सुन आयो। नानक भाग परयो हर पाछ, राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा, मानुख बिन बूझे बिरथा आया। अनक सा सिंगार बहु करता, जो मृतक ओढ़ाया रहाओ। ताए ताए किरपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन संतन सेवा, कित ही काज ना आया। कर आपरन सवारी सेजा, कम न थाट बनाया। संग न पायो अपने परते, पेख बेख दुख पाया। सारो दिन समझूरी करता, तो मुसले शराया। खेद पयो बेगारी न्याई, कर कै काम न आया। पयो अनुग्रह जा को प्रभ को, तिस हृदय नाम वसाया। साध संगत कै पाछे परयो, जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा, कृपा निद बसुर दै हरनीत। तैसी बुद्ध करो परगासा, लागै प्रभ संग प्रीत रहाओ। दास तुम्हारे की पावो तूरा, मस्तक ले ले लावो। महापत ते होत पुनीता, हर कीर्तन गुन गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तहारो पावो। जो तू देहे तही एहो तृप्त, या नकत हूं तावो। सद ही निगट जानो प्रभु स्वामी, सगले रिण होए रही है। साधु संगत होए प्राप्त, ता प्रभु अपना लही है। सदा सदा हम शोहरे तुमरे, तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक तुम मात पिता, मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा, कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मांगो दान ठाकुर नाम, अवर कछु मेरा संग न चल। मिले कृपा गुणगाम रहाओ। राज माला नेक भोग रस, सगल तरवर की शाम। ताए ताए बहुबिद कौ तावै, सगल निरार्थ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहौ, दिसै सगल बात है खाम। कहो नानक संत रेन मांगो, मेरो मन पावै विश्राम। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी को नाम मने साधारे। जी प्राण सुख इस मन को, बर्तन ए हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी पत है, नाम मेरा परिवार है। नाम सिखाई सदा मेरा संग, हर नाम मुको निस्तार है। बिखै बिलास कहियत बहुत तेरे, चलत ना कछु संगार। इष्ट मीत नाम नानको, हर नाम मेरा पंडार है। टोडी महला

चरण पखार करो गुर सेवा, मन चरामो भोग, छोड़ आपत बाद हंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहो नानक एक बिन दूजा, अवर ना करन है जोग। टोडी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर ना सूजै दूजी ठाहर, हार पर्यो तौ द्वारी, लेखा छोड़ा लेखा छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंध सदा मेहरवाना, सब ना दे आधारी, नानक दास संत पाछै पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निध गायण, सांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायण, जन्म मरण दोहूं ते छूटे, पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचार्यो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी

काल जाल जम जोहे न साकै सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किश निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवां किरपनो तन मन किलवख भरे साध संग भजन कर स्वामी ठाकन कौ इक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस आराधे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहै ओए ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवां हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगड़ न को लागे जा की प्रभया गए अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवां हर हर नाम सदा सद जाप तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नियाप रहाओ जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से सोग संताप हाथ दे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेरवाना दया तारी हरनाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका वड प्रताप टोडी महला पंजवां स्वामी शरण परयो दरबारे कोट पराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्ब अर्थ बिचारे साध संग परमगत पाई ऐ माया रच बंध हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवां कर तीजा चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद हां हां लपट्योरे मूड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सोजानी मोरी रहाओ आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचयो जित भूख तसायो अमृत।

दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फोनो नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरनावण पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कह कहे कह जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जैसो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवियां हां टठिया कम ना आवनी विचों सखणिया हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख पुलान से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगे आईया अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंगे वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गाउण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी इतना मिलिया गुर आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया चल ऐ सतगुर पाए पवे ना पीखिया। जा को महला हजूर दूजे नवै किस दर दर वाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। टाहे उसारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ये द्वारे तोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी।
ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ।

तेरा सदड़ा सुनी जय भाई जेको बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणै जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना हो वही जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कांडिए जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मुंड मुंडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सदगुर भेटै ता सहसा टूटै तावत वर्ज रहाई है। निजर चरै सहे तुन लागै कर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है। वाजे बाजो सिंगी वाजै तौ निरपो पद पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।